दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भोर सुहानी, मेरे यानी अर्चना बिसारिया के साथ आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल यानी 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और अब जो गीत आपको सुनवाने जा रही हूँ, उसे गाया है लता मंगेशकर ने। फिल्म का नाम है सितारा।

थोड़ी सी जमीन, थोड़ा आसमां, तिनकों का बस एक आशियां। ये खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे सितारा फिल्म से, आवाजें भूपेंद्र सिंह और लता मंगेशकर की थी। कार्यक्रम का अगला गीत है खानदान फिल्म से, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने।

और दोस्तों, भोर सुहानी कार्यक्रम के आखिर में आइए अब आपको सुनवाते हैं बावर्ची फिल्म का गीत, आवाज़ें भन्नाडे और असरानी की।

और दोस्तों, इस गीत के साथ ही मुझे यानी अर्चना बिसारिया को भोर सुहानी कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए। आपका दिन शुभ हो।

0: मुकेश कुमार बल। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। श्री शाह ने कल राजस्थान के अलवर में राज्य के 17 जिलों में 6,400 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और लोकार्पण करते हुए ये बात कही।
1: 2047 में अगर भारत को पूर्ण विकसित बनाना है तो ये युवा, गरीब, अन्नदाता और महिला को ताकतवान बनाना पड़े। आज यही मन से किसानों को किसान सम्मान निधि, पशुपालकों के लिए 500 करोड़ की डेयरी की व्यवस्थाएं, युवाओं को नौकरी और माताओं के लिए, बहनों के लिए सरस डेयरी का एक्सटेंशन का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।
0: ब्रिक्स के पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन पर संपर्क समूह के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। भारत कल ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। इस कार्यक्रम का आयोजन भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के विषय के अंतर्गत किया जाएगा। इस वर्ष इस सम्मेलन का विषय लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण है। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का संचालन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 प्रदान करेंगे। मंत्रालय ने बताया कि इस अवसर पर पेंशन मित्र पुस्तिका और देशव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र DLC अभियान 5 के दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान एक बैंक प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। इसमें 17 पेंशन वितरण बैंक सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए तैयार अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रदर्शन करेंगे। राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार योजना 2026 के लिए 15 कर्मचारी

कर्मचारियों का चयन किया गया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट और परीक्षा के तीन विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र की पुनर्परीक्षा की घोषणा की है। इन विषयों में कई त्रुटियों की शिकायतें मिलने के बाद ये निर्णय लिया गया है। एनटीए ने बताया कि अंग्रेजी का विषय 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक, वाणिज्य विषय का पेपर उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक और समाजशास्त्र का विषय 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित किया जाएगा। विशाखापत्तनम की सभी उड़ानें आज से भोगपुरम स्थित नए अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से संचालित होंगी। एयर इंडिया भोगपुरम और दिल्ली के बीच 14 साप्ताहिक उड़ानें जारी रखेगी। 77,342 वर्ग मीटर में फैला यह नया टर्मिनल यात्रियों के लिए बेहतर सुविधा और परिचालन दक्षता प्रदान करता है। BWF बैडमिंटन चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु का मुकाबला आयरलैंड की सोफिया नोबेल से होगा। वहीं महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी पहले दौर में स्पेन की जोड़ी से खेलेगी। आयुष शेट्टी का सामना चीन के शी यू क्यूई से होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी को बाई मिलने के बाद वे पहले ही दूसरे दौर में पहुंच चुके हैं। वहीं भारतीय जोड़ी एमआर अर्जुन और हरिहरन अमस्करुणन का मुकाबला आयरलैंड की जोड़ी से होगा। उधर पुरुष क्रिकेट में भारत आज श्रीलंका के गाले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में श्रृंखला के पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन पहली पारी के अपने 460 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। पुरुष हॉकी में भारतीय टीम आज नीदरलैंड्स में अपने दूसरे मैच में इंग्लैंड का सामना करेगी। आज का मुकाबला पूल डी में शीर्ष स्थान हासिल करने वाली टीम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। भारत ने वेल्स पर 3-1 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की थी। और मौसम विभाग ने आज ओडिशा और पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश और लद्दाख में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ईरानी चाय,
1: बन मस्का,
0: हैदराबादी बिरयानी,
1: टंग दी कबाब,
0: कुर्बानी का मीठा,
1: शहदूद मलाई।
0: हैदराबाद इज अ ग्रैंड बफे
1: एंड एवरी डिश हैज अ स्टोरी वेटिंग टू बी टोल्ड।
0: एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई जश्ने हैदराबाद इज योर आफ्टरनून ट्रीट
1: फ्रॉम 2 to 3 PM एवरी डे ऑन FM रेनबो 101.9।
0: इट्स नॉट जस्ट फूड,
1: इट्स कल्चर, हिस्ट्री एंड फ्लेवर रोल्ड इनटू वन।
0: जश्ने हैदराबाद।

आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 101.9 और मैं हूं आपकी आरजे अभिज्ञा। 15 अगस्त का सेलिब्रेशन तो हम सब ने किया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर घर तिरंगा का सेलिब्रेशन सिर्फ 15 अगस्त तक लिमिटेड नहीं है। इस साल 9 अगस्त से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा कैंपेन के थ्रू देश भर में तिरंगे के प्रति सम्मान और देशभक्ति का जज्बा सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो आज 17 अगस्त को हम बात करेंगे एक ऐसे तिरंगे की जो सिर्फ 3 रंगों का झंडा ही नहीं, ये है हमारी आइडेंटिटी, हमारी यूनिटी, हमारी फ्रीडम की कहानी और हमारे देश के लिए हमारा गर्व। तो सुनते रहिए आकाशवाणी 101.9।

0: FM Rainbow 101.9.
1: वेलकम बैक दोस्तों। अब सवाल है कि हर घर तिरंगा शुरू किसने किया और क्यों? हर घर तिरंगा कैंपेन को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 22 जुलाई 2022 को लॉन्च किया था। ये कैंपेन आज़ादी का अमृत महोत्सव का हिस्सा था। 2022 में इंडिया अपनी इंडिपेंडेंस के 75 ईयर्स सेलिब्रेट कर रहा था और इसी मौके पर एक ब्यूटीफुल आइडिया सामने आया। क्यों ना तिरंगा सिर्फ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, स्कूल्स और ऑफिशियल प्रोग्राम्स में ही नजर आए, बल्कि हर इंडियन के घर पर तिरंगा लहराए। इसी थॉट से शुरू हुआ हर घर तिरंगा। इस कैंपेन का पर्पस बहुत सिंपल था, हर सिटीजन को नेशनल फ्लैग से इमोशनली कनेक्ट करना, तिरंगे के प्रति रेस्पेक्ट और प्राइड बांधना और इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशंस को एक जन भागीदारी यानी पीपल्स पार्टिसिपेशन मूवमेंट बनाना। तो चलिए सुनते रहिए आकाशवाणी 101.9।

0: FM Rainbow 101.9.
1: Well, welcome back, listeners. सोचिए, जब पूरा देश एक साथ अपने घर पर एक ही तिरंगा लगाता है तो वो सिर्फ एक सेलिब्रेशन नहीं होता, वो एक मैसेज होता है। हम अलग हो सकते हैं लेकिन हमारा देश एक है। दोस्तों, कभी आपने सोचा है तिरंगा देखते ही हम इमोशनल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इसमें सिर्फ कलर्स नहीं है, इसमें हिस्ट्री है, सैक्रिफाइस है, फ्रीडम फाइटर्स की कहानी है और एक इंडिपेंडेंट इंडिया का ड्रीम है। केसरी रंग हमें करेज और सैक्रिफाइस की याद दिलाता है, सफेद रंग पीस और ट्रूथ का सिंबल है, हरा रंग ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी की याद दिलाता है और बीच में अशोका चक्र, 24 स्पोक्स वाला अशोका चक्र, ये हमें कंटिन्यूअसली मूव फॉरवर्ड करने का मैसेज देता है। मतलब रुकना नहीं, आगे बढ़ते रहना है। और यही तो इंडिया की कहानी है। हर चैलेंज के बाद एक नई बिगनिंग, हर स्ट्रगल के बाद एक नई होप। तो जब भी आप अगली बार तिरंगा देखें, सिर्फ एक फ्लैग मत समझिएगा, उसमें अपनी देश की कहानी देखिए। तो बस सुनते रहिए 101.9।

0: FM Rainbow 101.9.
1: Well, Zeus, अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट। क्या आप जानते हैं कि इंडियन नेशनल फ्लैग के डिजाइन से सबसे क्लोजली जुड़ने नामों में से एक है पिंगली वेंकैया जी। आंध्र प्रदेश से संबंधित रखने वाले पिंगली वेंकैया जी ने नेशनल फ्लैग के डिजाइन के डेवलपमेंट में इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था। और दोस्तों, एक और इंटरेस्टिंग कनेक्शन। आज हम जिस तिरंगे की बात कर रहे हैं उसके पीछे कितनी जनरेशन्स की मेहनत, इमेजिनेशन और सैक्रिफाइस छुपी हुई है। 22 जुलाई 1947 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द इंडियन नेशनल फ्लैग को ऑफिशियली अडॉप्ट किया था और फिर 15 अगस्त 1947 इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट। तब से तिरंगा हमारी सोवरेनिटी, फ्रीडम और नेशनल आइडेंटिटी का एक पावरफुल सिंबल बन गया। एक झंडा, एक देश और क्रोर्स ऑफ इंडियंस के इमोशंस। तो चलिए सुनते रहिए आकाशवाणी 101.9 FM रेनबो।

0: FM Rainbow 101.9.
1: Welcome back, listeners. तो आज 17th August है. इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन अभी अभी गुजरा है. तिरंगा, देशभक्ति के गीत, परेड, स्पीचेस, हर तरफ एक ही फीलिंग थी, प्राउड टू बी इंडियन. लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं 15 अगस्त 1947 को इंडिया आजाद हुआ, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो बाउंड्री डिसाइड हुई थी, उस बाउंड्री का ऑफिशियल अनाउंसमेंट 17 अगस्त को हुआ था, और इसी बाउंड्री को हम जानते हैं रैडक्लिफ लाइन के नाम से. एक लाइन, सिर्फ एक लाइन नहीं है, लेकिन इस एक लाइन ने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी. सोचिए, आप सुबह अपने घर में उठते हैं, वही घर, वही गली, वही बाजार, वही पड़ोसी, लेकिन एक अनाउंसमेंट के बाद पता चलता है अब आप जिस जगह रह रहे हो वो दूसरे देश का हिस्सा है. कैसा लगता होगा? आज के शो में हम इसी कहानी को समझेंगे. कौन थे सर सिरिल रैडक्लिफ? उन्हें इंडिया पाकिस्तान की बाउंड्री बनाने का काम क्यों दिया गया? इतना बड़ा डिसीजन सिर्फ कुछ हफ्तों में कैसे लिया गया? और सबसे इम्पोर्टेंट, रैडक्लिफ लाइन सिर्फ मैप पर खींची गई एक लाइन थी या लाखों की दिलों पर भी एक गहरी लकीर खींची गई? स्टे विद मी, मैं हूँ अजय विज्ञा, और आज की कहानी है एक लकीर जिसने दो देश बना दी. सुनते रहिए 101.9.

0: 101.9।
1: वेलकम बैक लिसनर्स। हाँ, हम बात कर रहे थे रैटक्लिफ लाइन के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में समझाते हैं रैटक्लिफ लाइन क्या थी। 1947 में ब्रिटिश इंडिया को पार्टीशन करके दो नए डोमिनेंस बनाए गए, इंडिया और पाकिस्तान। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल था, बाउंड्री कहाँ होगी, कौन सा डिस्ट्रिक्ट इंडिया में जाएगा और कौन सा पाकिस्तान में, पंजाब का क्या होगा, बंगाल का क्या होगा। और यही रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई एक ब्रिटिश लॉयर को, सर सिरिल रैटक्लिफ। अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है, रैटक्लिफ साहब इंडिया में पहले कभी काम नहीं करे। उन्हें इंडियन ज्योग्राफी और लोकल पॉलिटिक्स का कोई डीप पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं था, फिर भी उन्हें इतना हिस्टोरिक टास्क दिया गया। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश अथॉरिटीज को एक ऐसा पर्सन चाहिए था जो रिलेटिवली न्यूट्रल हो। रैटक्लिफ को दो बाउंड्री कमीशन के चेयरमैन बनाया गया, एक पंजाब के लिए और एक बंगाल के लिए। उनका काम था पॉपुलेशन, रिलीजियस मेजॉरिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशंस, कम्युनिकेशंस और दूसरे फैक्टर्स को देखकर बाउंड्री रिकमेंड करना। लेकिन टाइम बहुत ही कम, सिर्फ कुछ हफ्तों का। तो चलिए इसी सस्पेंस को बरकरार रखते हैं और सुनते हैं हमारा अगला ट्रैक। सुनते रहिए 101.9।

वेलकम बैक दोस्तों। आज अगर किसी सिटी का बाउंड्री चेंज करना हो तो मीटिंग्स होती है, कमिटीज बनती है, मैप्स देखे जाते हैं। लेकिन 1947 में सिचुएशन एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड थी और वक्त बहुत कम। सोचिए दोस्तों, अगर आपको कहा जाए ये लो इंडिया का मैप और कुछ हफ्तों में डिसाइड करो कि इंडिया कहाँ से खत्म होगा और पाकिस्तान कहाँ से शुरू होगा, आप क्या करेंगी? क्या आप इतने बड़े डिसीजन को कुछ हफ्तों में ले पाते? अब कहानी और इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि बाउंड्री बनाना सिर्फ मैप पर पेंसिल चलाना नहीं था, हर लाइन के पीछे एक इंसान की जिंदगी थी। तो चलिए सुनेंगे हमारा अगला ट्रैक।

0: FM Rainbow 101.9.
1: Well, welcome back, listeners. The time is passing by 11:34 in the studio clock. तो हाँ दोस्तों, नाम याद रखिएगा, सर सिरिल रैटक्लिफ, एक ब्रिटिश लॉयर. उनका मेन प्रोफेशन था लॉ, और सडनली उन्हें एक ऐसा असाइनमेंट मिला जिसका इम्पैक्ट जनरेशंस तक रहने वाला था. उनके सामने मैप्स थे, डाटा था, रिपोर्ट्स थी, पॉलिटिकल डिमांड्स थी, और सबसे इम्पोर्टेंट, इंडिया की एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड सोशल रियलिटी थी. पंजाब और बंगाल दोनों रीजन्स में कम्युनिटीज मिक्स्ड पॉपुलेशन में रहती थी. एक डिस्ट्रिक्ट में एक कम्युनिटी मेजॉरिटी में हो सकती थी, लेकिन अगले डिस्ट्रिक्ट में सिचुएशन बिल्कुल ऑपोजिट. रेलवे लाइंस, कैनाल्स, रोड्स, रिवर्स, मार्केट्स, विलेजेस, सब एक दूसरे से कनेक्टेड थे. अगर बाउंड्री एक जगह से गुजरती तो सिर्फ लैंड डिवाइड नहीं होती, फैमिलीज डिवाइड हो सकती थी, बिजनेस डिवाइड हो सकते थे, रेलवे रूट्स डिवाइड हो सकते थे.

और सबसे पेनफुल घर डिवाइड हो सकते थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सुनते रहिए 101.9 FM रेनबो।

0: FM Rainbow 101.9।
1: अब आते हैं आज के दिन पर। इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल चुकी थी, पाकिस्तान भी इंडिपेंडेंट हो चुका था, लेकिन पंजाब और बंगाल की फाइनल बाउंड्री पब्लिकली अनाउंस नहीं हुई थी। बाउंड्री अवार्ड का अनाउंसमेंट 17 अगस्त 1947 को हुआ और इसी वजह से 17 अगस्त को रैटक्लिफ लाइन के कॉन्टेस्ट में बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। इमेजिन द सिचुएशन, 15 अगस्त, सेलिब्रेशन, फ्रीडम, न्यू बिगनिंग, लेकिन कुछ लोगों के लिए इसी वक्त अनसर्टेनिटी भी थी। उन्हें नहीं पता था कल हम किस कंट्री में होंगे। ये हिस्ट्री का सबसे अनयूजुअल और पेनफुल मोमेंट्स में से एक था। सुनते रहिए 101.9 FM रेनबो।

0: FM Rainbow 101.9।
1: दोस्तों, हिस्ट्री को याद करने का मतलब सिर्फ डेट्स याद करना नहीं है। हिस्ट्री हमें चॉइसेस और कॉन्सिक्वेंसेस समझाती है। रैटक्लिफ लाइन की स्टोरी हमें बताती है बॉर्डर्स इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ह्यूमन लाइफ्स उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज हम इंडिया में रहते हैं, हम फ्रीली ट्रैवल कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स से मिल सकते हैं, अपने फेस्टिवल्स सेलिब्रेट कर सकते हैं, अपनी लैंग्वेज बोलते हैं, अपनी कल्चर को एंजॉय करते हैं। लेकिन 1947 के लोगों के लिए आइडेंटिटी और बिलोंगिंग का सवाल बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। इसलिए इंडिपेंडेंस डे के बाद 17 अगस्त को एक मोमेंट के लिए रुककर सोचना भी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी अगली ट्रैक की ओर। सुनते रहिए 101.9 FM रेनबो।
2: LIC मी जीवितम।

तहत कार्यक्रम की थीम है समायोजन नवाचार सहयोग और स्थिरता का निर्माण। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का संचालन केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दुर्गम इलाकों में जनगणना 2027 के लिए जनसंख्या गणना 1 सितंबर से शुरू होगी। इससे पहले नागरिकों की सुविधा के लिए आज से 31 अगस्त तक डिजिटल रूप से स्वगणना की विशेष

0: सुविधा दी जाएगी। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण जनगणना पूरी करना चुनौतीपूर्ण होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए बर्फबारी वाले क्षेत्रों में जनगणना का कार्यक्रम विशेष व्यवस्था के साथ और देश के बाकी हिस्सों से पहले रखा गया है। पीएम गतिशक्ति पहल के अंतर्गत अब तक विभिन्न मंत्रालयों की लगभग 18,66,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली कुल 396 अवसंरचना परियोजनाओं की सिफारिश की गई है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि इनमें से 256 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। इन परियोजनाओं में से 198 परियोजनाएं क्रियान्वयन की प्रक्रिया में हैं। मंत्रालय ने कहा है कि इन परियोजनाओं का मूल्यांकन नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप NPG तंत्र के माध्यम से किया गया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने UGC नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य तथा समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की है। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायत मिलने के बाद यह निर्णय लिया गया है। NTA ने बताया कि अंग्रेजी विषय की परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रथम पाली में और वाणिज्य विषय की परीक्षा उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी पाली में होगी। समाजशास्त्र विषय की परीक्षा 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित की जाएगी। झारखंड में JPSC JSSC भर्ती परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का आज 24वां दिन है। विद्यार्थियों ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में अपना प्रदर्शन तेज कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार और विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों के बीच आज बातचीत का एक नया दौर होगा।
1: JPSC JSSC अभ्यर्थियों ने कल रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट टिक्का चौक तक विरोध मार्च निकाला। छात्रों ने JSSC CGL परीक्षा रद्द करने और भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग को लेकर नारेबाजी की। इस बीच राज्य सरकार ने आंदोलनरत छात्रों को आज दोपहर 2 बजे रांची में बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। छात्रों को अपने विधिक सलाहकारों के साथ वार्ता में शामिल होने की अनुमति दी गई है। रिफॉर्म मंच ने कहा कि सरकार छात्रों की मांगें स्वीकार करती है तो आंदोलन समाप्त करने की दिशा में कदम उठाया जा सकता है, अन्यथा आंदोलन जारी रहेगा। छात्रों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन का ऐलान पहले ही कर रखा है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में तारापीठ पुलिस स्टेशन के पास स्थित एक होटल में आज तड़के आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई। होटल मालिक ने बताया कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। दमकल कर्मी और पुलिस मौके पर पहुंचे तथा बचाव अभियान शुरू किया। बिहार में लखीसराय जिले के अशोक धाम मंदिर में आज भगदड़ में 7 महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 10 से अधिक श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पवित्र सावन महीने के तीसरे सोमवार पर भगवान के जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ वहां जमा थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के निकट परिजनों के लिए 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने आज बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित 4 जिलों शिवसागर, गोलाघाट, जोरहाट और चराईदेव के प्रभावित परिवारों के लिए अंतरिम वित्तीय सहायता जारी की। प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक आज दोपहर के कारोबार में 0.5% की गिरावट में चल रहे थे। अंतिम समाचार मिलने तक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 515 अंक की गिरावट से 77,494 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। The government will soon constitute a high-level committee for public sector banks. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman said this after inaugurating the 2-day public sector bank conclave in New Delhi today. The Finance Minister added that the committee will decide the future course of banking reforms by taking up issues and recommendations. She further noted that bankers will set the tone of Vikasit Bharat. The conclave brings together the leadership of public sector banks and public financial institutions to deliberate on key priorities, emerging opportunities, and the evolving landscape of the banking and financial sector. Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar will launch the Electoral Literacy Club ELC

0: FM Rainbow 101.9 Musically yours.
1: Welcome back, listeners. Time is passing by 12:11 in the studio clock. दोस्तों, हम सबके फोन में एक कैलेंडर होता है. डेट देखनी हो, बर्थडे याद रखना हो, अपॉइंटमेंट सेट करनी हो, कैलेंडर हमारा बेस्ट फ्रेंड है. लेकिन कभी सीरियसली सोचा है, जनवरी ही साल का पहला मंथ क्यों है? फरवरी को सिर्फ 28 दिन ही क्यों मिलते हैं? और हर चार साल में फरवरी को एक एक्स्ट्रा दिन क्यों मिलता है? मतलब फरवरी को भी कभी कभी बोनस मिलता है. आज का पूरा सेगमेंट इसे इंटरेस्टिंग कैलेंडर की दुनिया के नाम, और एंड तक आपको पता चलेगा कि सितंबर का नाम सितंबर होते हुए भी नाइन्थ मंथ क्यों कहा जाता है. तो सुनते रहिए 101.9.

0: FM Rainbow 101.9.
1: Welcome back, listeners. तो हाँ, सबसे पहले बात करते हैं लीप ईयर की। हम नॉर्मली कहते हैं एक साल में 365 डेज होते हैं, लेकिन एक्चुअली अर्थ को सन का एक कंप्लीट राउंड कंप्लीट करने में अप्रॉक्सीमेटली 365 डेज और ऑलमोस्ट 6 आवर्स लगते हैं। अब ये एक्स्ट्रा 6 आवर्स सुनने में छोटा लग रहा है, लेकिन हर साल ये टाइम एक्यूमुलेट होता रहता है। एक साल अराउंड 6 आवर्स, एक्स्ट्रा 2 साल अराउंड 12 आवर्स, 3 साल अराउंड 18 आवर्स और 4 साल में ऑलमोस्ट 24 आवर्स, यानी एक पूरा एक्स्ट्रा डे। इसलिए कैलेंडर को अर्थ के एक्चुअल मूवमेंट के साथ सिंक्रोनाइज रखने के लिए एक एक्स्ट्रा दिन ऐड किया जाता है, और वो एक्स्ट्रा डे है 29 फरवरी। जिस साल फरवरी 29 डेज की होती है उसे हमें कहते हैं लीप ईयर। है ना इंटरेस्टिंग? तो चलिए सुनते हैं हमारा अगला ट्रैक।

0: FM Rainbow 101.9।
1: नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। द टाइम इज पासिंग इन द स्टूडियो क्लॉक बाय 12:31। तो दोस्तों, अब चलते हैं जनवरी की तरफ। जनवरी का नाम रोमन गॉड जानस से एसोसिएटेड है। जानस को बिगनिंग्स और ट्रांसिशन से कनेक्ट किया जाता था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जानस को ट्रेडिशनली दो फेसेस के साथ रिप्रेजेंट किया जाता था, एक फेस पास्ट की तरफ और एक फ्यूचर की तरफ, बिल्कुल न्यू ईयर जैसा। हम भी जनवरी में पिछले साल को याद करते हैं और नए साल के प्लान्स बनाते हैं। न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते वक्त सबका कॉन्फिडेंस, दिस ईयर आई विल चेंज माय लाइफ, और फरवरी तक चलो यार नेक्स्ट ईयर से प्रॉपरली स्टार्ट करेंगे। तो चलिए सुनते रहिए 101.9 FM रेनबो, रेनबो के साथ लाइफ है रंगीन।

0: FM Rainbow 101.9।
1: दोस्तों अब बात करते हैं फरवरी की। कैलेंडर का सबसे छोटा मंथ 28 डेज नॉर्मली और लीप ईयर भी 29। फरवरी का ये शॉर्ट मंथ होना एंशिएंट रोमन कैलेंडर के हिस्टोरिकल चेंजेस से कनेक्टेड है और फरवरी 29 को बॉर्न होने वाले लोग उनके लिए बर्थडे थोड़ा स्पेशल ही है। इन्हें कॉमनली लीपलिंग कहा जाता है। इमेजिन करो आप किसी को बोलो हैप्पी बर्थडे और वो बोले थैंक यू नेक्स्ट एक्चुअली बर्थडे 4 साल बाद है। मार्च का नाम रोमन गॉड से कनेक्टेड है और एंशियंट रोमन कैलेंडर ट्रेडिशंस में मार्च का बहुत इंपॉर्टेंट पोजिशन था। इंडिया में मार्च का मतलब स्टूडेंट्स के लिए मार्च का एक ही क्वेश्चन कितना सिलेबस हुआ और अप्रैल नाम लैटिन नाम है अप्रिलिस से एसोसिएटेड माना जाता है और अप्रैल का सबसे फेमस डे अप्रैल फूल्स डे 1 अप्रैल एक ऐसा दिन जहां आपके दोस्त सडनली बहुत इनोसेंट लगते हैं और फिर बोलते हैं अप्रैल फूल। मे का नाम रोमन गॉडेस मैया से एसोसिएटेड माना जाता है। इंडिया में मे गर्मी मैंगो समर हॉलीडेज और एसी का रिमोट घर में सबसे बड़ा डिबेट 24 डिग्री नहीं 26 पे रखो एसी बंद करो यार ये सब तो चलता ही रहता है। चलो आप सुनते रहिए आकाशवाणी 101.9।

0: FM Rainbow 101.9 Musically yours.
1: अब आता है मेरा फेवरेट कैलेंडर मिस्ट्री सितंबर। सितंबर का नाम लैटिन वर्ड सेप्टम से कनेक्टेड है और सेप्टम का मीनिंग है सेवन, लेकिन सितंबर तो सेवन नहीं है, नाइन्थ मंथ है। वाई अक्टूबर का मीनिंग एट, नवंबर नाइन और दिसंबर टेन, तो फिर ये नंबर्स मैच क्यों नहीं कर रहे? एक्चुअली एंशियंट रोमन कैलेंडर की अर्लियर अरेंजमेंट में मार्च से ईयर स्टार्ट होने की ट्रेडिशन है, इसलिए सितंबर सेवंथ पोजीशन में आता है। अक्टूबर 8, नवंबर 9 और दिसंबर 10 बाद में जनवरी और फरवरी कैलेंडर के बिगनिंग में आ गए। मंथ्स की पोजीशन चेंज हो गई लेकिन पुराने नेम्स वही रह गए, मतलब सितंबर आज भी अपने नाम में अपनी एंशियंट आइडेंटिटी कैरी कर रहा है। कितनी इंटरेस्टिंग बात है ना? तो हाँ, हेलो रेनबो का वक्त भी हो चुका है, तो आज का टॉपिक भी इसी बारे में है। आप लोगों का फेवरेट मंथ कौन सा है और क्यों, यानी आपकी फेवरेट महीना कौन सा है और क्यों, ये बात आप हमसे शेयर करने के लिए कॉल कर सकते हैं 0402323 0030, 0402323 4821 और 0402970 4715 पर। सुनते रहिए 101.9 FM रेनबो, रेनबो के साथ लाइव।

0: वेल हेलो रेनबो का वक्त हो चुका है, हमारे फर्स्ट कॉलर हमारी इंतज़ार कर रहे हैं। हेलो
1: गुड आफ्टरनून मैडम,
0: जी, गुड आफ्टरनून
1: नरसिम्हा रेड्डी मैडम, प्रेमावती पेठ, राजेंद्र नगर।
0: जी, नमस्कार। आज का टॉपिक आपने सुना है
1: जी सुना मैडम,
0: जी, बताइए आपका फेवरेट मंथ कौन सा है?
1: जनवरी मैडम,
0: जनवरी। क्यों?
1: जनवरी इसीलिए कि मेरी यही महीना में मेरा बर्थडे है,
0: अच्छा
1: और
0: जी
1: उसके बारे में क्या बोले तो मेरा फेवरेट जो फेस्टिवल रहता है ना मैडम, संक्रांत,
0: जी
1: इसी महीने में रहता है। और जो देश के लिए जो 26 जनवरी भी बनाते हैं ना,
0: जी हाँ जी,
1: झंडा वंदन का जो
0: रिपब्लिक
1: बनाते
0: डे।
1: हैं,
0: जी हाँ
1: ये भी यही महीने में, इसलिए मेरे ये तीनों के वजह से मेरे को ये जनवरी महीना बहुत फेवरेट है। और क्या मौसम भी बहुत ठीक रहता है मैडम जनवरी में, तन तन से
0: जी
1: वातावरण भी पूरा हरा भरा रहता है, जाड़ा वगैरह बहुत अच्छा दिखता है, इसीलिए मेरे को ये मंथ बोलते मेरा फेवरेट है मैडम। थैंक
0: जी जी धन्यवाद कॉल करने
1: यू
0: के लिए।
1: मैडम।
0: जी थैंक यू।
1: ओके
0: We'll have our next caller. Hello.
2: गुड आफ्टरनून मैडम,
0: जी गुड आफ्टरनून
2: मेरा नाम महजबीन है, सोशल वर्कर बाबा नगर से बात कर रही हूँ।
0: जी, स्वागत है
2: मेरे को
0: आपका
2: है
0: हेलो रेनबो में। जी आज
2: जी
0: स्वागत है आपका हेलो रेनबो में।
2: जी जी
0: जी आज का टॉपिक आपने सुना है?
2: हाँ सुनी।
0: जी बताइए।
2: हाँ मेरे को देखो, ये आज अब ये चल रहा जो हमारा चांद का महीना, हमारे नबी की पैदाइश का महीना है, तो ये बेहद पसंद है। उसके बाद में फेब्रवरी
0: जी
2: दो पसंद है।
0: जी बहुत अच्छी बात है।
2: ओके
0: जी धन्यवाद। सो लेट्स कंटिन्यू टू आवर नेक्स्ट ट्रैक।

0: We'll speak to our next caller. Hello.
1: हेलो,
0: Hello. Namaskar.
1: नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून मैडम।
0: गुड आफ्टरनून जी, आपका नाम?
1: मेरा नाम मोहम्मद अफजर है, मैं गोलकुंडा फोर्ट से बोल रहा हूँ।
0: जी, स्वागत है आपका हेलो रेनबो में जी. आज का
1: जी
0: टॉपिक
1: मैडम,
0: आपने
1: जी
0: सुना है?
1: मैडम।
0: आज का टॉपिक आपने सुना है?
1: हाँ, सुना मैं।
0: जी बताइए.
1: अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये चार
0: ओके
1: महीने मेरे को पसंद है। क्यों बोले तो सर्दियाँ जो है मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं।
0: जी
1: सर्दी में बहुत अच्छा महसूस होता, डाइजेशन अच्छा होता, कहीं
0: जी
1: घूम फिर सकते, पिकनिक मना सकते। सर्दियों में कोई थकावट नहीं होती और सर्दियां मेरे को बहुत पसंद है। मेरे को 4 महीने बहुत पसंद है।
0: जी जी
1: थैंक यू मैडम।
0: जी धन्यवाद. सो लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट ट्रैक. सुनते रहिए 101.9 FM रेनबो. रेनबो के साथ लाइफ है रंगीन.

0: Well, that was a pleasant song by Ayushmann Khurrana ji. Here is our next caller. Hello.
1: हेलो, गुड आफ्टरनून मैडम.
0: जी, गुड आफ्टरनून.
1: मेरा नाम ओम शांति. नमस्कार मंडी.
0: नमस्ते.
1: मेरा नाम पोल सिटी मेहर बाबा जुबिल से बात कर रहा हूँ मैडम.
0: जी, स्वागत है आपका. हेलो रेनबो में.
1: जी जी
0: जी, आज
1: थैंक यू
0: का
1: मैडम.
0: टॉपिक आपने सुना है.
1: जी, मैडम पहले रावणैया भैया को नमस्कार नमस्कार कर रहा हूँ मैडम. सब
0: जी
1: लोगों कालर को नमस्कार करके नमस्कार कर रहा हूँ मैडम.
0: जी
1: कौन सा महीने बोले तो मैडम, मेरे को मई महीने बहुत पसंद है मैडम. मेरे को बर्थडे आता, शादी का दिन आता, मई महीने में मुंजिलो आता, आम आम आता, सब कुछ आता, मेरे को बहुत पसंद है मैडम.
0: जी बहुत अच्छी बात है. थैंक यू.
1: जी.
0: जी,

0: ये आकाशवाणी हैदराबाद 101.9 मेगाहर्ट्ज़ मीडियम वेव पर मैं हूँ आपकी आरजे सबा शेख मोहम्मद शफ़ी। सामैन की खिदमत में सबा मोहम्मद शफ़ी का आदाब। बज़्म की शुरुआत करते हैं नए रंग प्रोग्राम से। आइए सबसे पहले नए रंग प्रोग्राम में सुनते हैं हरफ़े ताबिंदा, जिसे पेश कर रहे हैं अजमतुल्ला खान।
1: शुजात के लगवी माने दिलेरी, बहादुरी, सूरमापन, मर्दानगी, जुर्रत के हैं। इसके अलावा हौसला, हिम्मत, जवामर्दी, जानबाजी के भी मुराद लिए जाते हैं। शुजात का हकीकी मफहूम और रूह। शुजात का हकीकी मफहूम सिर्फ बहादुरी दिखाना या खौफ का ना होना

नहीं है, ये इससे कहीं ज़्यादा बढ़कर है। शुजात दरअसल अपने खौफ का सामना करते हुए मुश्किल हालात में भी दुरुस्त और मुनासिब कदम उठाने का नाम है। ये क़ुव्वत इरादी, अखलाकी जुर्रत और सब्र का इम्तिजाज है। शुजात की मुख्तलिफ सूरतें। अखलाकी शुजात, किसी भी गैर मुनसिफाना या गलत बात के खिलाफ आवाज़ उठाने की जरूरत का नाम है। ये इस वक्त ज़्यादा अहम हो जाती है जब आप अकेले हों, आपके खिलाफ बहुत से लोग हों। सच्चाई और इंसाफ के लिए खड़े होना चाहिए, इसकी कोई भी कीमत अदा करनी पड़े, यही अखलाकी शुजात है। जिस्मानी शुजात, ये वो शुजात है जो आमतौर पर जंग, खेल या किसी हादसे के दौरान जिस्मानी खतरात का सामना करने में नज़र आती है। इसका मकसद अपने या दूसरों की हिफाजत करना मकसूद होता है। जज्बाती शुजात, अपनी कमज़ोरियों, गलतियों और एहसासात को तस्लीम करने का नाम है। इसमें दूसरे लोगों से मदद मांगने की भी हिम्मत शामिल है। अपने दिल की बात कहना और मुसरत होने के खौफ के बावजूद आगे बढ़ना शुजात है। तख्लीकी शुजात, ये नए ख्यालात, मंसूबों को हकीकत का रूप देने का नाम है। इसके लिए तनकीदी या नाकामी के खौफ के बावजूद कुछ नया करने की हिम्मत ज़रूरी है। माली शुजात, माली फैसले करना, जैसा कि सरमायाकारी करना या नौकरी छोड़कर अपना कारोबार शुरू करना शुजात का तकाजा है। इसके माली नुकसानात के खौफ को नज़रअंदाज करते हुए मुस्तकबिल की बेहतर मनसूबाबंदी करना पड़ती है। एक ऐसी शुजात है जो इंसान को माशी तौर पर आज़ाद होने की तरफ ले जाती है। इनफरादी शुजात, यह अपनी मुनफरिद शनाख्त को बरकरार रखने की हिम्मत है। आज के दौर में जब सब एक जैसा सोचने और करने पर जोर देते हैं, वहाँ अपनी इनफरादियत और अपनी इकदार पर कायम रखना एक चैलेंज है। शुजात ना सिर्फ इंसान की ज़ात को मजबूत बनाती है, बल्कि इसके अमली ज़िंदगी पर गहरे असरात मुरतब होते हैं। फैसला साजी में आसानी। बहादुर लोग मुश्किल हालात में भी दुरुस्त फैसले करने की सलाहियत रखते हैं। खुद एतमादी में इजाफा। शुजात इंसान की खुद एतमादी को बढ़ाती है, इसे नए चैलेंजेस का सामना करने के काबिल बनाती है। कामयाबी का हुसूल। शुजात के बगैर कामयाबी हासिल करना मुश्किल है। कामयाब लोग हमेशा खतरात मोल लेने की हिम्मत रखते हैं। ज़हनी सुकून। जब आप खौफ के बजाय हक और सच का साथ देते हैं, तो आपको एक गहरा इत्मीनान और सुकून हासिल होता है। शुजात सिर्फ एक अमल नहीं, बल्कि एक मुसलसल ज़हनी कैफियत है। ये हर रोज़ ज़िंदगी के छोटे छोटे फैसलों और रवैयों में नज़र आती है। अपने उसूलों पर कायम रहना, दूसरों के लिए हमदर्दी दिखाना और मुश्किल वक्त में भी पुर उम्मीद रहना, ये सब शुजात की मुख्तलिफ शक्लें हैं। शुजात दरअसल अपने खौफ का सामना करते हुए मुश्किल हालात में भी दुरुस्त और मुनासिब कदम उठाने का नाम है। ये क़ुव्वत इरादी, अखलाकी जुर्रत और सब्र का हसीन इम्तिजाज है। जुर्रत का रिवायती तस्वुर उमूमन खतरात का मुकाबला करने या बहादुरी दिखाने तक महदूद था। ये तस्वुर अक्सर मैदान जंग या जिस्मानी ताकत से जुड़ा जाता था, लेकिन आज के दौर में इसका मफहूम ज़्यादा वसी और जामे हो चुका है। अब सिर्फ जिस्मानी बहादुरी नहीं, बल्कि अखलाकी, जज्बाती, समाजी जुर्रत भी है। आज की दुनिया में शुजात का ताल्लुक हमारे अंदर की ताकत से है। ये दिल की मजबूती है जो हमें हर तरह के हालात में सीधा खड़ा रहने की हिम्मत देती है। ये जिस्मानी ताकत से ज़्यादा रूहानी और दिल की ताकत है। शुजात और अमली ज़िंदगी। शुजात का मतलब महज खौफ की अदम मौजूदगी नहीं, बल्कि ये एक ऐसी क़ुव्वत है जो इंसान को खौफ और मुश्किलात के बावजूद आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। बहर कैफ, शुजात इंसान की दिलेराना सलाहियत का नाम है जो इंसान को खतरात, मुश्किलात, नाकामियों और गैर यकीनी सूरतहाल का मुकाबला करने के काबिल बनाती है। ये ना सिर्फ मैदान जंग तक महदूद नहीं, बल्कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी के हर पहलुओं में इसका मुजाहरा किया जा सकता है। एक ऐसी अखलाकी सिफ्त है जो इंसान को हक और सच्चाई के लिए खड़ा होने की जरूरत फराहम करती है। शुजात सिर्फ एक अमल नहीं, बल्कि एक तर्ज ज़िंदगी है। ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के हर छोटे बड़े

0: फैसले में नजर आती है। ये हमें आगे बढ़ने, मुश्किलात का सामना करने, एक बेहतर जिंदगी गुजारने की हिम्मत देती है।
1: सामाइन, अभी आप सुन रहे थे हरफे ताबिंदा, जिसे पेश कर रहे थे अजमतुल्ला खान। आइए सामाइन, बज़्म को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं बिसाते गज़ल की तरफ, जो कि मुजफ्फर निसा नाज़ की पेशकश है।
2: गज़ल पेश करती हूँ, समाज फरमाइए।

एक साथ जल कर भी क्यों फना नहीं होते, एक साथ जल कर भी क्यों फना नहीं होते। कुछ ना कुछ तो मजबूरी होगी उनकी राहों में, कुछ ना कुछ तो मजबूरी होगी उनकी राहों में। प्यार करने वाले तो बेवफा नहीं होते, प्यार करने वाले तो बेवफा नहीं होते। शेर है।

जो दौर अपने साथ था वो किस तरफ किधर गया, जो दौर अपने साथ था वो किस तरफ किधर गया। हेलो।

अभी आप सुन रहे थे बिसाते गज़ल जो मुजफ्फर उन्निसा नाज पेश कर रहे थे। आइए सामईन बज़्म को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं गीत सुरेले गाते जाकी जाने। जी हाँ सामईन, जहाँ हम खूबसूरत नगमों के साथ ज़िंदगी से जुड़ी कुछ अहम बातें भी आपके साथ शेयर करते हैं। आज का हमारा मौजू है मोहब्बत, खलूस और रिश्तों की कदर। जी हाँ, ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारी खुशियों की वजह बनते हैं, हमारे दुख को महसूस करते हैं और मुश्किल वक्त में हमारा साथ भी देते हैं।

ऐसे रिश्तों की कद्र करना और अपने जज्बात का इजहार करना भी हमारी अखलाकी जिम्मेदारी है, क्योंकि मोहब्बत सिर्फ लफ्ज़ों का नाम नहीं बल्कि एहसास का, एहतराम का और वफा का नाम है। इसी खूबसूरत एहसास को बयान करता हुआ एक दिल को छू लेने वाला नगमा अब हम आपकी समातों की नज़र करने जा रहे हैं। फिल्म मुस्कान का खूबसूरत गीत

मुस्कान का खूबसूरत गीत, वो हो तुम जो मोहब्बत के इसी हसीन एहसास को अपने अंदर समोए हुए हैं। तो आइए मोहब्बत और एहसास से भरे इस खूबसूरत नगमे के साथ लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। सुनिए वो हो तुम।

ज़िंदगी में बाज़ औक़ात हम किसी इंसान, किसी रिश्ते या किसी खूबसूरत यार से इतने जुड़ जाते हैं दोस्तों कि इसे भुलाना आसान नहीं होता। लेकिन वक्त हमें ये सिखाता है कि हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं, हमें कुछ सिखाते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे वक्त में ज़रूरी है कि हम माजी में क़ैद रहने के बजाय ख़ुद को संभालें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का हौसला पैदा करें। इसी एहसास को खूबसूरती से बयान करता हुआ फिल्म हैक का नगमा अब आपकी समातों की नज़र किए जा रही हूँ। सुनिए और महसूस कीजिएगा अब ना फिर।

आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम गीत सुरीले गाए जा। मोहब्बत एक ऐसा एहसास है जिसे अल्फाज में बयान करना हमेशा आसान नहीं होता दोस्तों। कभी दिल खुशी से भर जाता है और कभी किसी की याद दिल को बेकरार कर देती है। लेकिन ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि अपने जज्बात को समझना और दूसरों के जज्बात की कदर करना बहुत ही ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी दिल की कैफियत ऐसी होती है कि इंसान खुद से ही सवाल करने लगता है कि आखिर मेरे दिल को ये क्या हो गया है। इसी खूबसूरत कैफियत को अपने अल्फाज और धुन में समेटे हुए फिल्म शुक्रिया का दिल को छू लेने वाला गीत क्या हाल है मेरे इस दिल का, अब आपकी समातों की नज़र करने जा रही हूँ। आइए सुनते हैं क्या हाल है मेरे इस दिल का।

दोस्तों आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीत सुरेले गाए जा। जिंदगी में ख्वाब देखना आसान है दोस्तों, लेकिन इन ख्वाबों को हकीकत बनाने के लिए हमेशा हिम्मत, मेहनत और मुसलसल कोशिश की ज़रूरत होती है। जी हाँ, हालात

कितने ही मुश्किल क्यों ना हो, अगर इंसान अपने दिल की आवाज़ सुने और ख़ुद पर यकीन रखे तो मंजिल हासिल की जा सकती है। जी हाँ, क्योंकि कामयाबी सिर्फ जीतने का नाम नहीं बल्कि मुश्किलात के बावजूद आगे बढ़ते रहने का नाम है। और अब इसी खूबसूरत एहसास के साथ पेश खिदमत है फिल्म पंगा का प्यारा सा गीत दिल ने कहा। तो आइए सुनते हैं और अपने दिल की आवाज़ को महसूस करते हैं। ये रहा गीत दिल ने कहा।

समय में आपको बताते चलूं कि आप सुन रहे हैं गीत सुरीले गाए जा। जी हाँ दोस्तों, माँ एक ऐसा रिश्ता है जिसकी मोहब्बत को अल्फाज में बयान करना शायद ही कभी मुमकिन नहीं। जी हाँ, माँ हमारी पहली उस्ताद होती है, हमारी सबसे बड़ी हमदर्द, हमारी खामोश दुआओं की आवाज़ होती है। जी हाँ, बच्चे चाहे कितने बड़े क्यों ना हो जाए, माँ की मोहब्बत और दुआएं हमेशा इनके साथ रहती है। आज का ये खूबसूरत गीत हर उस माँ के नाम जो अपनी औलाद की खुशी के लिए अपनी बेशुमार ख्वाहिशें कुर्बान कर देती है। तो आइए फिल्म तारे ज़मीन पर का दिल को छू लेने वाला गीत माँ सुनते हैं और इस अजीम रिश्ते को सलाम पेश करते हैं। ये गीत हर माँ के नाम। माँ

कभी कभी जिंदगी में फासले सिर्फ दो लोगों के दरमियान नहीं होते हैं दोस्तों, बल्कि दिलों के दरमियान भी आ जाते हैं। अपनों से दूरी इंसान को बहुत कुछ सिखाती है, मोहब्बत की कद्र, रिश्तों की अहमियत और उन लोगों की कमी जो हमारी ज़िंदगी का खूबसूरत हिस्सा होते हैं। लेकिन सच्ची मोहब्बत और खलूस वो एहसास है जो फासले बढ़ जाने के बावजूद भी दिलों को एक दूसरे से जोड़े रखते हैं। इसी खूबसूरत एहसास की तर्जमानी करता हुआ ये फिल्म बागी 3 का दिल को छू लेने वाला गीत फासलों में अब आपकी समाअत की नज़र करने जा रही हूँ। तो आइए सुनते हैं फासलों में।

0: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीत सुरले गाते जा। वालिदैन हमारी ज़िंदगी का वो कीमती सरमाया है जिनकी मोहब्बत और कुर्बानियों का कोई नेमल बदल नहीं दोस्तों। जी हाँ, ख़ास तौर पर वालिद जो अपनी ख्वाहिशों को पीछे रख कर अपनी औलाद के ख्वाब पूरे करने की कोशिश करते हैं। हमें चाहिए कि उनकी मौजूदगी में ही उनकी कद्र करें और मोहब्बत का इजहार करें। इसी खूबसूरत रिश्ते और बाप बेटे की मोहब्बत को बयान करता हुआ ये प्यारा सा गीत, पापा मेरे पापा, अब आपकी समातों की नज़र करने जा रही हूँ, तो आइए सुनते हैं पापा मेरे पापा।
1: अच्छा गुनगुन, मुझे अपने पापा के बारे में कुछ बताओ।

ज़िंदगी में कभी कभी दिल पर ऐसे लम्हे आते हैं दोस्तों, जब इंसान अपने जज्बात को अल्फाज में बयान नहीं कर पाता। जी हाँ, दिल को सुकून, अपनों का साथ और थोड़ी सी मोहब्बत की ज़रूरत होती है। ऐसे वक्त में हमें अपने दिल की आवाज़ सुननी चाहिए और ख़ुद को वक्त देना चाहिए, क्योंकि हर मुश्किल वक्त हमेशा नहीं रहता। इसी एहसास को खूबसूरत अंदाज में पेश करता हुआ फिल्म हॉन्टेड का नगमा इस दिल को थोड़ा अब आपकी नज़र करती हूँ। तो आइए, दिल की कैफियत को महसूस करते हुए सुनिए यह खूबसूरत सा गीत, इस दिल को थोड़ा।

समय में आपको बताते चलूं कि हम सुन रहे हैं गीत सुरीले गाए जा, जी हाँ, आपका पसंदीदा प्रोग्राम, जहाँ खूबसूरत नगमों के साथ साथ ज़िंदगी की खूबसूरत एहसास और छोटे छोटे पैगामात भी आप तक हम पहुँचाते हैं। सामाइन, ज़िंदगी एक ऐसा सफ़र है जिसमें हर मोड़ पर एक नया एहसास हमारा मुंतज़िर होता है। कभी हमारे दामन में बेशुमार खुशियाँ आती है, तो कभी अचानक कोई गम हमें अंदर से तोड़ देता है। लेकिन शायद ज़िंदगी की खूबसूरती भी इसी में है, कभी खुशी कभी गम, सिलसिला चलता रहे। खुशियों के लम्हों में हमें शुक्र अदा करना चाहिए और अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ अपनी खुशियाँ बांटनी चाहिए, क्योंकि खुशी बांटने से कम नहीं होती बल्कि और बढ़ जाती है। और जब गम का वक्त आए तो हमें मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी रात हमेशा नहीं रहती। हर अंधेरे के बाद एक नई सुबह ज़रूर आती है जो आपका इंतज़ार करती है। ज़िंदगी में सबसे कीमती चीज़ हमारे अपने रिश्ते होते हैं, अपने वो लोग जो हमारी कामयाबी पर हमसे ज़्यादा खुश होते हैं और हमारी परेशानी में खामोशी से हमारे साथ खड़े रहते हैं। इसलिए अपनों की कद्र कीजिए, दिल में मोहब्बत रखिए, गलतियों को माफ़ कीजिए और कोशिश कीजिए कि हमारी

वजह से किसी के चेहरे की मुस्कुराहट कभी ना छीने। तो आइए आज के इस खूबसूरत पैगाम के साथ अपने दिल को एक खूबसूरत एहसास से जोड़ते हैं। पेश खिदमत है फिल्म कभी खुशी कभी गम का यादगार और दिल को छू लेने वाला नगमा। सुनिए, महसूस कीजिए और अपने प्यारों को याद कीजिए। कभी खुशी कभी गम।

आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम गीत सुरीले गाए जा, जहां हर तामे के साथ हम जिंदगी के किसी खूबसूरत एहसास को आपके दिलों तक पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं। सामाइन, मोहब्बत सिर्फ किसी को पसंद करने का नाम नहीं, बल्कि मोहब्बत वो एहसास है जिसमें हमें किसी दूसरे इंसान की खुशी, अपनी खुशी महसूस होने लगती है। सच्ची मोहब्बत में इंसान खूबसूरती सिर्फ चेहरे पर नहीं, बल्कि दिल, किरदार, खलूस और वफादारी में तलाश करता है। किसी का ख्याल रखना, इसकी इज्जत करना, मुश्किल वक्त में इसका साथ देना और बग़ैर किसी मतलब के इसके लिए दुआ करना, यही मोहब्बत की असल खूबसूरती है। जब किसी इंसान की मौजूदगी हमारी ज़िंदगी को सुकून, उम्मीद और खुशियों से भर दे, तो दिल बेख्तियार कह उठता है, शायद इस रिश्ते में खुदा की कोई ख़ास रहमत शामिल है। और इसी खूबसूरत एहसास मोहब्बत को आवाज़ देता है फिल्म रब ने बना दी जोड़ी हमारी का बेहद मकबूल और दिल को छू लेने वाला गीत तुझ में रब दिखता है। तो आइए दोस्तों, मोहब्बत, खलूस और खूबसूरत रिश्ते के इसी एहसास के साथ सुनते हैं ये यादगार नगमा, तुझ में रब दिखता है। ये एक सिर्फ गीत नहीं, बल्कि मोहब्बत की एक खूबसूरत एहसास की तर्जुमानी भी करता है।

सामान्य जिंदगी में मुश्किलें तो बहुत आती रहती है, मगर कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हर आजमाइश हमें कुछ ना कुछ सिखाती है और पहले से ज़्यादा मजबूत बनाती है। बस सब्र रखिए, खुद पर यकीन रखिए और आगे बढ़ते ही जाइए। इसी खूबसूरत एहसास के साथ फिल्म जुबान का गीत, ऐ जिंदगी आसमां नहीं आपकी समातों की नज़र करने जा रही हूँ।

इसी के साथ सामाइन अभी ख़त्म होता है कि सुरीले गाए जा आइए नए रंग बज़्म के आखिर में सुनते हैं पयाम-ए-शब जो कि जैदी पेश कर रहे हैं।

0: इसीलिए तो है जिंदा को जस्तजू मेरी, कि मुफलिसी को सिखाई है सरकशी मैंने। अगर इंसान हक, इज्जत और खुददारी के साथ जीना सीख ले तो गुर्बत भी उसे झुकने पर मजबूर नहीं कर सकती। ऐसे लोग जालिम या ताकतवर के लिए हमेशा खिटकते हैं, क्योंकि वो खरीदे या डराए नहीं जा सकते। मुफलिसी आयब नहीं, खुददारी खो देना आयब है। हक बात।
1: इसी के साथ नैरंग प्रोग्राम ख़त्म होता है। अभी आप सुन रहे थे उर्दू नैरंग प्रोग्राम 101.9 मेगाहर्ट्ज़ मीडियम वेव पर। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त सबा मोहम्मद शफी। इजाज़त दीजिए मुझे, अब वक्त हमसे कह रहा है अब हम आपसे अगले दिन मिलेंगे। अब रात के 11 बजने ही वाले हैं, कुछ ही देर में समाचार दिल्ली से प्रसारित होंगे।

आकाशवाणी एफएम रेनबो पर आइए अब सुनते हैं इस घंटे के मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी नेटवर्क को ध्वस्त कर 200 से अधिक संचालकों को गिरफ्तार किया। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत लगभग 7,900 करोड़ रुपये के 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने परीक्षा सुधारों पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को सभी परीक्षा प्रक्रियाओं की गहन जांच करने का निर्देश दिया। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नई टीम की घोषणा की। पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी और वसुंधरा राजे सिंधिया प्रमुख नामों में शामिल। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि पुणे और उसके आसपास लगभग 60,000 करोड़ रुपए की लागत से सड़क नेटवर्क विकसित किया जाएगा। दिल्ली में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के तहत गणना का चरण आज पूरा हो गया। कतर में रहने वाले भारतीयों के लिए डाकघरों से यूपीआई के माध्यम से घर पैसे भेजने की सुविधा शुरू हो गई है। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पाउडेल ने काठमांडू में आयोजित अलंकरण समारोह में भारत के सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को नेपाली सेना का अवैतनिक जनरल रैंक प्रदान किया। ईरान ने कहा है कि उसने ओमान के साथ होर्मुज जल डमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही को व्यवस्थित करने की योजना पर सहमति बना ली है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान को चेतावनी दी है कि वह होर्मुज जल डमरू मध्य पर नियंत्रण को लेकर ईरान के साथ किसी समझौते में शामिल न हो। गोल क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका पहली पारी में 284 रन पर सिमटी। भारत को 178 रन की बढ़त। जापान में अगले महीने की

19 तारीख से शुरू होने वाले 20वें एशियाई खेलों में सेपक टकरा खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए नागालैंड की 4 महिलाओं को चुना गया है। तो आकाशवाणी FM रेनबो पर ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी एफएम रेनबो पर समय है रंगी महफिल का। रंगी महफिल में आपके सफ़र के हम सफ़र में सीमा बात करेंगे। कुछ महफिलें जो सिर्फ सजती नहीं दिलों में उतर जाती हैं, कुछ नगमे सिर्फ सुनाई नहीं देते यादों में बस जाते हैं। तो आइए इसी महफिल में रंग भरते हैं, रंग मोहब्बत के, संगीत के, यादों के और उन खूबसूरत एहसासों के जो दिल को छू जाए। स्वागत है आप सभी का रंगे महफिल के सुरीले सफर में आपकी हम सफर सीमा के साथ।

0: कोयल सी तेरी बोली, कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु,
1: आए हाय।
0: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे।

0: Good evening and welcome to Market Mantra. Today being Monday, we will also be taking calls from you, our listeners, on your market-related queries. But do remember that we do not address stock or company-specific queries. You can call us on 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And of course, listeners, do remember to prefix the Delhi STD code 011 in front of these numbers. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Nikhil Kumar.
1: नमस्कार. मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है. आज सोमवार है और हम आपके प्रश्नों को भी कार्यक्रम में शामिल करेंगे. व्यापार, अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी प्रश्न पूछने के लिए आप हमें इन नंबर्स पर फोन कर सकते हैं. 2331-4444, 2331-0481 और तीसरा नंबर है 2371-7106. दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबर से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें. आपके प्रश्नों का उत्तर देने और चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ शरद कोहली. शरद जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है.
2: नमस्कार निखिल, नमस्कार अनुभव, सभी श्रोताओं को मेरा अभिवादन.
1: और श्रोताओं, कार्यक्रम में अब आर्थिक सुर्खियों पर एक नजर.
0: Thank you, Nikhil. Benchmark domestic indices fall, Sensex slips nearly 300 points, Nifty settles below 24,300. SEBI chief backs continuation of closing auction session, says regulator will review industry feedback and make necessary changes, and global crude oil prices rise.
1: शेयर बाजार में आज गिरावट का रुख. सेंसेक्स में लगभग 300 अंक की सुस्ती, जबकि निफ्टी 24,300 अंक के नीचे बंद हुआ. सेबी के प्रमुख ने कहा क्लोजिंग ऑक्शन सेशन अभी जारी रहेगा. सेबी प्राप्त सुझावों पर विचार करेगा और आवश्यक होने पर बदलाव भी लाएगा. और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में उछाल.

0: And listeners, we will be taking calls from you and Mr. Sharad Kohli will be answering them. But before that, do remember that the views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. Nikhil.
1: श्रोताओं आपको बता दें घरेलू शेयर बाजार आज गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 0.36% यानी 281 अंक गिरकर 77,728 पर बंद हुआ। निफ्टी 0.32% यानी 78 अंक गिरकर 24,288 पर पहुंच गया। हालांकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार में आज बढ़त का रुख देखा गया। मिड कैप सूचकांक में मामूली तेजी आई जबकि स्मॉल कैप में 0.4% का उछाल आया।
0: Benchmark domestic equity indices ended in the negative zone today. The Sensex dropped 281 points or 0.36% to close at 77,728. The Nifty lost 78 points or 0.32% to settle at 24,288. However, the broader market at the National Stock Exchange managed to end in positive territory. The Mid-Cap 100 index eked out a marginal gain, while the Small-Cap 100 index increased 0.4%. Earlier, the markets opened on a weak footing amid geopolitical uncertainty, with both benchmark indices remaining under pressure after the opening bell. Though the indices spared some of their earlier losses during the afternoon trade, yet they continued to trade in negative territory.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 23 कंपनियों में आज गिरावट दर्ज हुई। सबसे ज्यादा गिरावट वाली कंपनियों में इंफोसिस 2.7%, एचसीएल टेक 2.5% और सनफार्मा 2.2% नीचे रहे। इसके विपरीत टाटा स्टील 1.5%, एक्सिस बैंक 1% और रिलायंस 0.8% ऊपर चढ़े।
0: In the sectoral indices on the BSE, 15 out of 28 sectors ended with losses. Among the top underperformers, information technology declined 1.7%, focused IT dropped 1.6% and telecommunication fell by 1.2%. In contrast, realty increased 1.4%, metal gained 1% and capital goods added 0.8%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,353 companies declined. Shares of 2,087 companies advanced while shares of 234 companies remained unchanged.
1: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया आज 18 पैसे कमजोर होकर 95.61 पर बंद हुआ। और इस बीच हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं दिल्ली से अमित। अमित, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, सवाल पूछिए।
2: नमस्कार जी।
1: नमस्कार
2: पोली सर। नमस्कार सर।
3: नमस्कार अमित
2: सर। कटेडे को नहीं आए थे आप सर?
3: हाँ, आज तो आपसे बातचीत हो रही है, बताइए।
2: ठीक है सर, प्रश्न ये है, जैसे आप कहते हैं सर कि सेक्टर रोटेशन, ठीक है सर, जैसे आप हमेशा कहते हैं, तो सेक्टर रोटेशन में कौन सा सेक्टर अभी रोटेशन में है या उसका रोटेशन अब एंड हो चुका है, ये हम कैसे पता करें कि सर वो सेक्टर की अब रोटेशन है वो एंड हो चुकी है और हम इसमें अब बाइंग कर सकते हैं? दूसरी चीज सर, जो अभी सेबी ने एक 4 अगस्त से एक सेबी ने जो नया नियम लाया सर ऑप्शन का जो भी है, तो इसमें क्या हो क्या रहा है सर कि 3:15 पे जैसे इक्विटी कैश मार्केट बंद हो जाती है? हेलो सर।
3: हाँ जी, हाँ जी।
2: तो निफ्टी अचानक से 5 मिनट बाद या 7 मिनट बाद ओपन होती है, लाइक 366 की क्लोजिंग होती है 3:15 पे और सडनली वो ओपन हो जाता है फिर से 435 पे, तो उसके बाद 3:40 तक ऑप्शन मार्केट चल रहा है, तो इसमें थोड़ा सा ना सर प्रीमियम का थोड़ा सा कैलकुलेशन करना या फिर उसमें थोड़ा सा ट्रेड को कब लें एग्जिट करना, एकदम से 10 रुपए कॉल आती है 3:15 पे और फिर उसके सडनली 5 मिनट बाद ही 100 रुपए पे ट्रेड होने लगती है, तो इससे थोड़ा सा कंफ्यूजन सा और डर ज्यादा लगा रहता है। धन्यवाद सर।
3: जी हाँ अमित, आपके दोनों प्रश्न बहुत जायज हैं। रोटेशन का आपने पूछा, रोटेशन का पता चलता है जब उस सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स हैं, जैसे मान लीजिए डिफेंस सेक्टर, जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशन हुई तो डिफेंस सेक्टर ऊपर जा रहा है, तो अब जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशन शांत होती है तो थोड़ा सा डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स पर कूल डाउन होने। सबसे बड़ी उसकी पहचान ये है अमित कि उस सेक्टर के ज्यादातर स्टॉक्स फिर स्टेबल हो जाते हैं जाके, तो उससे आइडिया लगता है कि अब ये थोड़ा सेटल डाउन हो रहा है और ये तो बहुत आसान।

0: ने पता लगाना, आपके पास मान लीजिए मेरे पास 8 सेक्टर हैं, एफएमसीजी है, डिफेंस है, आईटी है, और भी जितने रिन्यूएबल एनर्जी का है, ऑटोमोबाइल है, मैं बहुत सारे सेक्टर्स गिनूं, तो आप उन सेक्टर्स के, आपको मैं सलाह ये दूंगा, आपको आसान तरीका बताता हूं, आप सेक्टर्स की कंपनीज की, अच्छी कंपनीज की लिस्ट बना के रखिए और उसको आप अपने प्राइस ट्रैकर जो होता है, हर निवेशक का अनुभव और निखिल एक प्राइस ट्रैकर होता है, उस प्राइस ट्रैकर में आप लगा दें तो आपको वो देखेंगे कि उस सेक्टर के सारे शेयर जैसे ही कोई खबर आती है या कोई ऐसी डेवलपमेंट होती है तो वो हिलने शुरू हो जाते हैं
1: जी।
0: तो वहां से आपको अंदाजा लगेगा कि ऊपर, और फिर जब वो सेटल हो जाते हैं तो पता लग जाता है अब इसके शेयर थोड़े से कूल डाउन हो रहे हैं या प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। दूसरा, आपने पूछा अभी खबर भी है आज इससे रिलेटेड कि सेबी के चीफ ने कहा है कि अभी ये जारी रहेगा और ये इस पे लोगों की सलाह ली जा रही है कि आगे क्या करना है। ये होता क्या है कि पहले आखिरी आधे घंटे में वेटेड एवरेज बेसिस पे प्राइस सेटल होती थी, अब ये क्लोजिंग ऑक्शन सेशन इसको कहते हैं कैश, तो इसमें अब आखिरी वक्त पर ऑक्शन की जाती है, उस ऑक्शन के आधार पर क्लोजिंग प्राइसेस आती हैं, तो बहुत सारे ट्रेडर्स को और बहुत सारे ऑपरेटर्स को इसमें परेशानी आ रही है, जैसे एग्जैक्टली जो आपने परेशानी बताई है ठीक यही परेशानी ज्यादातर ऑपरेटर्स को आ रही है, इसको लेके काफी, इनफैक्ट एक दिन तो ट्रेडर्स ने एक तरह से हड़ताल कर दी थी, उन्होंने ट्रेडिंग ही नहीं करी, उनको परेशानी आ रही है, थोड़ा कंफ्यूजन भी रहता है, एकदम से प्राइस ऊपर हो जाती है, लास्ट मिनट पे प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, एकदम से ऊपर चली जाती है निफ्टी, एकदम नीचे चली जाती है, तो इसको थोड़ा सा मुझे लग रहा है सेटल होने में टाइम लगेगा और थोड़ा सा, हालांकि मेरे अंदाज से ज्यादा समय लग रहा है, तो कुछ समय इंतजार करनी चाहिए। सेबी के चीफ ने आज स्टेटमेंट दी है और आपको आपको इसमें समाचार मिलता रहेगा
2: जी। एंड जितेंद्र इज ऑनलाइन विद अस फ्रॉम जयपुर, बट बिफोर वी टेक योर कॉल जितेंद्र, एज वी आर जस्ट डिस्कसिंग about this closing auction session, the concerns that Amit has raised and which Arshadaji just addressed, the SEBI chairman, Securities and Exchange Board of India chairman Tuhin Kamta Pandey addressed those concerns today, and he has reiterated that the new closing auction session CAS introduced from August 3rd will continue. Speaking on the sidelines of the launch of cyber reporting platforms at the National Institute of Securities Markets, Mr. Pandey said the regulator would consider suggestions from the industry and make changes wherever necessary. The SEBI chief added that there are no concerns around tracking error and that several participants in the industry have welcomed the move. He added some participants are yet to update their own systems, which have been built on the historical system and the VWAP system. He further noted that SEBI will soon come up with a consultation paper on the securities lending and borrowing mechanism in its efforts to stabilize cash. So, Mr. Kohli, as I just read, Mr. Kant, the SEBI chairman is aware of the concerns, and of course the government is saying that they will definitely take that into consideration and make changes wherever necessary.
0: Absolutely. I think as you rightly read, you know, some of the traders, they still operate on the old system. You know, all the trading is done online. And to adopt this new system of CAS, you need to update your software, update the systems which you are using. So all the operators maybe are not prepared for that. I think, as I said, it'll take time, but there is still a lot of confusion, I must say. And sooner this is addressed, the better it would be for people.
3: जितेंद्र है जयपुर से, उनसे बात करते हैं। जितेंद्र, आपका प्रश्न पूछिए।
4: हाँ सर, जैसे आईपीओ निकलता है तो मैं उसको देखा, तो जैसे एक ओएफएस था, ऑफर फॉर सेल, ठीक है ना, उसको ब्रैकेट में शेयर है, बेस इशू ब्रैकेट में शेयर है, फिर नेट ऑफर टू दी पब्लिक, ठीक है, तो ये तीन तरह का था, कोई कोई फ्रेश इशू भी आता है, तो रिटेलर के लिए क्या उसको देखना चाहिए कि मतलब वो अपने किसको क्या मार्क करना चाहिए, एक तो ये पहला प्रश्न है। दूसरा है कि सभी के स्ट्रेटजी स्ट्रेंथ पॉइंट रहते हैं और रिस्क भी बहुत पॉइंट रहता है, तो हम लोग उसको कैसे थोड़ा ये करें, टच करें।
0: आपका जितेंद्र, दूसरा सवाल तो बहुत क्लियर नहीं है, पर पहला सवाल आपने आईपीओ, ओएफएस और नेट ऑफर टू पब्लिक आया है। आईपीओ तो बिल्कुल फ्रेश होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं, नाम ही इनिशियल है उसका, तो इनिशियल मतलब कोई भी कंपनी जब पहली दफे कैपिटल मार्केट को टैप करती है, जब कैपिटल मार्केट में जाती है, उसको आईपीओ कहते हैं। ऑफर फॉर सेल उनका होता है जो ऑलरेडी कंपनी लिस्टेड है, वो एडिशनल इशू यानी कि सेकेंड इशू लाना चाहती है, या अपने जो प्रोमोटर्स के पास होल्डिंग होती है उसको वो लोग पब्लिक को देते हैं। इसी से आपका तीसरा वाला भी दिक्कत है, नेट ऑफर टू पब्लिक, उसका टोटल लिखा होता है कि टोटल जो प्रोमोटर्स के पास कैपिटल है उसमें से कितना पब्लिक को ऑफर किया जा रहा है। और आपका दूसरा वाला सवाल बहुत क्लियर नहीं था, आपने क्या पूछा, शायद पिछले सवाल से रिलेटेड
3: रिस्क मैनेजमेंट की शायद बात कर रहे थे,
0: रिस्क मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। अगर आप कैश से रिलेटेड कर रहे हैं तो उसके बारे में तो हम चर्चा कर चुके, पर बहुत स्पष्ट नहीं हो पाया किस चीज का रिस्क आप बात कर रहे हैं। मार्केट में तो बहुत सारे रिस्क होते हैं, मैं कौन से रिस्क की बात करूं समझ नहीं आया जी।
2: लेट्स टेक द नेक्स्ट कॉल, इट्स कमिंग इन फ्रॉम दिल्ली। दिनेश हैज जॉइंड अस ऑनलाइन। दिनेश, वेलकम टू मार्केट मंत्रा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।
5: सर,

0: Nomuşkan şişta bu.
1: Nomuşkan.
0: Ben kumarbolan da bir çok abi.
1: Ji.
2: दिनेश जी आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है आपसे
0: हेलो
2: जी हाँ जी बताएं जी
0: हाँ जी हाँ. मैं ये कह रहा था कि तो हम भी धीरे धीरे बहुत आ रहा है उधर
3: दिनेश जी ऐसा लग रहा है आपका नेटवर्क जहाँ आप खड़े हैं वहाँ ठीक नहीं है तो आपकी आवाज बीच में टूट रही है.
2: वी विल आस्क यू दिनेश जी आप अगली बार दोबारा कोशिश कर सकते हैं. लेट्स टेक द नेक्स्ट कॉल कमिंग इन फ्रॉम दिल्ली. रत्नाकर हैज जॉइंड अस.
4: हेलो
5: जी रत्नाकर जी स्वागत है सवाल पूछिए.
4: हेलो गुड इवनिंग सर. मेरा सवाल है कि जो शेयर मार्केट में प्री ओपनिंग सेशन होता है
3: जी
4: तो उसका मतलब क्या है प्री ओपनिंग सेशन और उसमें हम मार्केट में परचेस करने के लिए स्ट्रीक डाल सकते हैं क्या और उसका असर जब ही मार्केट एक्चुअली ओपन होता है 9:15 को तो उसमें क्या होता है ये सवाल है. तो दूसरा सवाल है कि ये आने वाले समय में कौन से सेक्टर में तेजी दिखाई दे सकती है. थैंक यू.
3: चलिए रत्नाकर जी दूसरा सवाल तो पहले भी कई बार पूछ चुके हैं पर इनका पहला सवाल प्री ओपनिंग सेशन का है. तो जिस प्रकार से अभी क्लोजिंग ऑक्शन सेशन हो रहा है इसी प्रकार से 9:15 बजे मार्केट प्री ओपनिंग के लिए खुल जाती है. इसमें आप अपने ट्रेड्स क्रिएट कर सकते हैं. उस ट्रेड को एक्सिक्यूट तो 9:30 बजे ही होते हैं जब मार्केट पूरी खुलती है पर उसमें उसको हम मार्केट मेकिंग सेशन भी कहते हैं एक तरह से. तो उसमें आप अपने ट्रेड्स चूज कर सकते हैं. आप ट्रेड्स अपने खड़े कर सकते हैं और 9:30 बजे उसको एक्सिक्यूट कर देते हैं. तो जैसे कुछ कुछ आप ऐसा समझिए कि जैसे क्लोजिंग ऑक्शन सेशन है अनुभव और निखिल उसी प्रकार से प्री ओपनिंग सेशन होता है. आप रत्नाकर जी इसमें ऐसे करेगा कभी आप उसको ट्राई करेगा अपने अगर कैश में डील करना है तो आप उसको उठा के देखिएगा तो आपको पूरा अंदाजा होगा कि कैसे मार्केट मेकिंग होती है उस समय. पर प्री ओपनिंग सेशन जनरली मैंने देखा है जो बड़े ट्रेडर्स हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं. छोटे ट्रेडर्स कम उसमें हाथ डालते हैं. दूसरा आपका है सेक्टर कौन सा अच्छा रहेगा. हालांकि आप ये पहले कई दफे पूछ चुके हैं मैं फिर बताना चाहूंगा. FMCG है जो मुझे लग रहा है जिसके प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे लग रहे हैं. डिफेंस अभी भी मुझे जियोपॉलिटिकल टेंशन को देखते बहुत अच्छा लग रहा है. जो मैंने अपने 4-5 सेक्टर्स हाईलाइट किए हुए हैं और मुझे रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन एनर्जी पे बहुत पोटेंशियल नजर आ रहा है. ऑटोमोबाइल्स में सिर्फ जो ईवीज पे फोकस कर रहे हैं मुझे लग रहा है उन कंपनीज पे आप ध्यान दे सकते हैं. तो ये कुछ सेक्टर्स हैं जिन पे 3-4 पे आप खास नजर बना कर देखते हैं. आईटी वगैरह थोड़ा सा अभी डाइसी है. ऑटोमोबाइल नॉन ईवी सेक्शन में डाइसी है. ऑयल कंपनीज भी डाइसी है. स्टील मेटल सेक्टर भी मुझे अब थोड़ा सा तेजी पकड़ता यहां से नजर आ रहा है. खासकर कॉपर हो गया और जो कंपनीज माइनिंग में है उनका मुझे प्रोस्पेक्ट अच्छा नजर आ रहा है. जी
5: इस बीच दिनेश दिल्ली से हमारे साथ एक बार फिर फोन लाइन पर है. दिनेश जी सवाल पूछिए जल्दी से.
0: नमस्कार मैं दिनेश कुमार बोल रहा हूँ दिल्ली अशोक विहार से.
3: जी बताइए
0: ये जो डॉलर रुपी का रेट है रुपी को हम लोग डीवैल्यू करते जा रहे हैं एक्सपोर्ट्स प्रमोट करने के लिए लेकिन हमारी पूरी इकोनॉमी लूज कर रही है स्टैंडर्ड्स एंड वो भी डीवैल्यू हो रही है इन कंपैरिजन विद इकोनॉमी ऑफ अदर कंट्री. हमारा जो 5 ट्रिलियन टन का लक्ष्य था वो भी हमारा डाइल्यूट होता जा रहा है अगर रुपी डीवैल्यू होता जा रहा है तो क्या हमको रुपी को स्ट्रेंथन नहीं करना चाहिए धीरे धीरे करके एंड ये जो डिमांड सप्लाई का फॉर्मूला है जैसे शेयर्स भी डिमांड सप्लाई पे होते हैं डिसाइड लेकिन शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू तो रिफ्लेक्ट नहीं होती है डिमांड सप्लाई के बेसिस पर. तो व्हाट इज द वे आउट कि हम लोग रुपी को डॉलर के विज स्ट्रेंथन कर सके.
3: देखिए दिनेश जी पहली बात तो डॉलर रुपी को हम डीवैल्यू कर नहीं रहे हैं. कोई ऐसा डेलिबरेट हम अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं कि उसको करा जाए. ये एक स्वाभाविक तौर से हो रहा है और मुख्यतः इसका कारण पीछे क्रूड ऑयल की प्राइसेस का ज्यादा रहना है. आज भी $90 के आसपास है. हमें ज्यादा जब डॉलर खरीदने पड़ते हैं तो उससे हमारा रुपया कमजोर होता है. अब बहुत कोशिश की जा रही है इसकी बल्कि RBI ने अभी FCNR बी डिपॉजिट्स निकाले उसमें $52.3 बिलियन आया है. अब तो FIIs और FPIs भी अभी 16,600 करोड़ के अगस्त में खरीदारी कर चुके हैं. पिछले महीने भी 20,000 करोड़ से करी. तो जैसे जैसे दिनेश जी डॉलर हमारे यहाँ आते हैं उससे रुपया संभलता है. जब डॉलर का आउटफ्लो बढ़ता है ऐसी जब हमारे इंपोर्ट्स बढ़ते हैं तो रूपी पे प्रेशर पड़ता है. जब एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं तो इसमें मैं समझता हूँ RBI अपनी तरफ से एक बैलेंस बना के रखता है और RBI डॉलर रूपी स्वॉप भी करता रहता है बीच बीच में. तो ये कोई जानबूझ के नहीं हो रहा और पूरी RBI इसमें भरसक प्रयास कर रहा है कि इसको यहीं पर संभाला जाए. पर बहुत हद तक ये स्वाभाविक होता है.
5: और खबरों में आगे बढ़ते हैं. देश की 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की आबादी के लिए बेरोजगारी दर जुलाई में घटकर 5.1% रह गई जो इस वर्ष जून में 5.5% थी. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने मासिक

0: श्रमबल और बेरोजगारी संबंधी आंकड़े जारी किए हैं। ग्रामीण बेरोजगारी दर पिछले महीने घटकर 4.5% रह गई, जबकि जून में ये 5% थी। इसके विपरीत शहरी बेरोजगारी दर जुलाई में मामूली बढ़कर 6.7% हो गई, जो जून में 6.6% थी। महिलाओं में कुल बेरोजगारी दर घटकर 5.4%, जबकि पुरुषों में ये घटकर 5% रह गई है। शरद, आपसे मैं दो प्रश्न पूछना चाहूंगा। पहला तो इसी खबर से रिलेटेड है, जिस तरह के ये आंकड़े आए हैं उनसे क्या स्थिति हमें नजर आ रही है। दूसरा मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि मार्केट की अगर हम बात करें तो पिछले महीने पिछले सप्ताह गिरावट का रुख देखा गया और आज कारोबार का पहला दिन था इस सप्ताह का, उसमें भी हम गिरावट का रुख देख रहे हैं।
1: देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट की पहले बात करें, मैं समझता हूँ अच्छी खबर है अगर अनएम्प्लॉयमेंट का रेट गिरता है। महिलाओं में थोड़ा सा गिरना, उसके और कारण भी होते हैं। कुछ महिला ऑप्ट आउट कर जाती हैं मार्केट से, शादी हो जाती है या कुछ और, ऐसा उनके निजी कारण होते हैं। पर हमारी जीडीपी की अच्छी रफ्तार और अभी आईआईपी के नंबर्स भी बहुत अच्छे आए थे। मुझे लग रहा है अनएम्प्लॉयमेंट को बहुत बूस्ट कर रहा है, स्टार्टअप्स नए लग रहे हैं, नौकरियां पैदा हो रही हैं, जबकि लोगों को डर था कि शायद एआई की वजह से नौकरियां नहीं लगेंगी। और दूसरा, आपने मार्केट्स का पूछा पिछले हफ्ते, तो मार्केट मुझे लग रहा है एक वैश्विक अनिश्चितता का माहौल अभी भी बना हुआ है। क्रूड ऑयल $90 पहुंचना, उधर बॉन्ड यील्ड अमेरिका में 4.6 से ऊपर चल रही है, डॉलर इंडेक्स लगभग 100 के ऊपर चल रहा है, तो ये सारे फैक्टर्स ने एक अनिश्चितता, तो भारतीय भारत के जो आंतरिक फैक्टर्स हैं वो इस समय अनुकूल हैं, पर जो फॉरेन फैक्टर्स हैं जिसके मार्केट जिसको क्यों लेके खुलता है वो प्रतिकूल बने हुए हैं। इस वजह से मार्केट जो है वो 24,000 निफ्टी के बीच में घूमे जा रहा है, कई दिन से घूमे जा रहा है, कोशिश करता है फिर कोई ना कोई खबर आ जाती है।
2: इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज यू जस्ट मेंशनड व्हिच वाज समथिंग आई वांटेड टू आस्क यू, यू टॉकिंग अबाउट द इंटरनल फैक्टर्स। सो इफ यू लुक एट द Q1 रिजल्ट्स नाउ बाय सम यू नो सम एस्टिमेट्स द Q1 रिजल्ट्स हैव कम आउट बेटर देन एक्सपेक्टेड एंड इन स्पाइट ऑफ दैट वी सी द मार्केट्स आर नॉट रिएक्टिंग to those better than expected results.
1: I think Anubhav, market the international factors are overriding,
2: right,
1: and they are sort of shadowing the domestic factors. As I said, domestically we are doing very well. There is a slight concern on monsoon. They say for the next 15 days are very crucial for kharif crops, but otherwise I think the international factors are dominating at this point of time.
2: Let's move forward.
0: अगली खबर पर आगे बढ़ते हैं। सरकार विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए बैंकिंग सुधार पर जल्द ही उच्च स्तरीय समिति गठित करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के दो दिन के सम्मेलन के उद्घाटन के बाद कहा कि यह समिति विभिन्न मुद्दों पर अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग सुधार के लिए भावी कार्यदिशा तय करेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि विचार विमर्श से प्राप्त हुए निष्कर्षों से समिति को महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय बैंक इस समय मजबूत स्थिति में है, डूबे कर्ज की स्थिति निम्नतम स्तर पर होने के कारण भविष्य के सुधारों के लिए मजबूत आधार उपलब्ध है। वित्त मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि उच्च स्तरीय समिति से सिफारिशें मिलने के सरकार और बैंकिंग क्षेत्र भारत की आर्थिक वृद्धि को तेज गति देने में सक्षम होंगे। शरद, वित्त मंत्री का यह बयान देना कि भारत की जो स्थिति है, बैंकों की जो स्थिति है, काफी मजबूत स्थिति में है और लगातार बदलाव सकारात्मक दिशा में हो रहे हैं, जिसके कारण ये कहा जा सकता है कि सरकार जिस दिशा में कोशिश कर रही, खासतौर पर दुनिया भर में जितनी भी समस्याएं देखने को हमें मिल रही है, ऐसी स्थिति में हमारी अर्थव्यवस्था को एक बैलेंस बना करके चलने की।
1: जी हाँ, बैंकिंग तो निखिल रीढ़ की हड्डी का काम करता है, बिकॉज बैंकिंग में जिस प्रकार से बैंकिंग रिफॉर्म्स हुए हैं पिछले चंद सालों में, खासकर सरकारी बैंकों की बैलेंस शीट्स की बहुत सफाई हुई है, अब एनपीएस का लोड कम है, और उसका मतलब ये नहीं है कि रिकवरी नहीं हो रही, जहां जहां रिकवरी है वहां रिकवरी हो रही है, पर ओवरऑल बैलेंस शीट का क्लीनअप किया गया है। और निजी बैंक तो वैसे ही बहुत ख्याल रखते हैं, निजी बैंक के तो प्रॉफिट बॉटम लाइन बहुत अच्छे आई है, और अब मुझे लगता है सरकारी बैंकों में फिर से लोगों का विश्वास बन रहा है, उनके कस्टमर्स उनके पास वापस आ रहे हैं और उनकी डिपॉजिट ग्रोथ भी अच्छी है, क्रेडिट ग्रोथ भी अच्छी है, तो ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर में बहुत सुधार दिखाई दिया है। और आपको मुझे लगता है बैंक निफ्टी को भी अगर आप पिछले कुछ महीनों से देखें तो वो उसमें साफ तरीके से दिखाई देता है।
2: Let's move on to the next story. But before we do that, Nikhil, let me repeat the numbers on which our callers can call us with their queries. You can call us on 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And of course, do remember to prefix the Delhi STD code 011. Mr. Sharad Kohli is in studio with us to answer your queries. Nikhil.
0: Jaya. नजर डालते हैं वैश्विक बाजारों पर। एशियाई बाजारों में जापान के निक्केई 225 में आज 0.7% की बढ़त हुई, जबकि दक्षिण कोरिया का बाजार छुट्टी के कारण बंद रहा। आर्थिक मोर्चे पर सरकार के जारी आंकड़ों के अनुसार जापान की सकल घरेलू उत्पाद इस साल अप्रैल से जून तिमाही के लिए 1.1% की सालाना दर से बढ़ी है। इस बीच दिल्ली से प्रीतम फोन लाइन पर हमारे साथ है। प्रीतम, आपका सवाल क्या है?
3: हेलो, नमस्कार।

0: जी नमस्कार, सवाल पूछिए।
1: खाली जी, मैं ये पूछना चाहूँगा कि एक यूनिक जो चीज़ है, हम जब बैंक में जाते हैं तो हमें एक स्कीम बताते हैं कि ये क्या है, तो पता चला है कि ये यूनिक होती है, इसमें इंश्योरेंस भी और आपका बचत भी होता है। दूसरा सवाल मेरा ये है खाली जी से, आप इस बात को मानेंगे कि जो अब जो यूक्रेन, रशिया, ईरान और ये बाकी और देशों में जो तबाही हुई है, बिल्डिंग में डैमेज हुई है, तो आने वाले समय में इन बिजनेस में, इस बिजनेस में बनाने के लिए, बिल्डिंग के लिए काफी लोगों की तादाद में काफी रोजगार मिलने के चांसेस है, इसके लिए आप क्या कहना चाहिए?
2: चलिए, प्रीतम जी ने अपना रेडियो सेट ऑन किया हुआ है, अपने आवाज़ बहुत अच्छा लगता है, आवाज़ अपनी सुनने में रेडियो सेट ऑन हो। देखिए यूलिप, मैं प्रीतम जी बोलूँगा कि यूलिप बहुत बहुत अच्छी स्कीम मैं नहीं मानता हूँ। बैंक वगैरह जो उसको बेचते हैं वो ठीक है, उनका काम है बेचना, क्योंकि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिक्स नहीं करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस मिक्स करने से क्या होता है कि आप बेस्ट ऑफ इंश्योरेंस भी नहीं ले पाते और बेस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी नहीं ले जाते। तो मेरा मानना है कि जिसको इंश्योरेंस जरूरी है, इंश्योरेंस आप लीजिए इंश्योरेंस के लिए, रिस्क कवरेज के लिए, और इन्वेस्टमेंट आप करिए इन्वेस्टमेंट के लिए। मैं बहुत ज्यादा यूलिप का निजी तौर पर बहुत फैन नहीं हूं, और सैद्धांतिक रूप से भी मुझे लगता है कि दोनों प्रोडक्ट्स को मिस नहीं करना चाहिए। अब देखिए प्रीतम जी को, तो यूक्रेन रशिया में जो बिल्डिंग्स गिरी हैं, जो ध्वस्त हुई हैं, रिकंस्ट्रक्शन की अपॉर्चुनिटी बिल्कुल है उसमें, और मुझे लग रहा है बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर की, अभी $300 बिलियन का मुझे याद है क्लेम ईरान ने बात की थी कि हमें चाहिए इसके लिए, तो बिल्कुल उनके लिए कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट्स निकलेंगे। अब भारतीय कंपनी कितना ले पाती है, नहीं ले पाती है, तो प्रश्न चिन्ह है। पर प्रीतम जी पहले लड़ाई रुकने तो दें, अभी तो मामला पहले एक बार थमेगा, तब कहीं दोबारा बनाने की बात आएगी। तो अभी तो हम यही अटकलें लगा रहे हैं कि कब रुकेगा, रुकेगा भी नहीं रुकेगा। आज तो मैं कहीं बात कर रहा था, मुझे लग रहा है लड़ाई चलती चली जा रही है, और सबसे बड़ी बात इसमें कोई जीत हार नहीं रहा है, ये देखने को मिल रहा है मुझे अजीब अजीबोगरीब। पहले लड़ाइयां होती थी उसमें कोई जीत हार जाता था, इसमें तो कोई ना हारता है ना कोई जीतता है
3: जी। और जैसा आपने कहा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि तबाही रुकनी चाहिए, बाद में रिकंस्ट्रक्शन। और इसी से लेट्स टेक द नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड टू दिस वेस्ट एशिया क्राइसिस। ईरान टुडे सेड इट हैज रीच्ड एन अग्रीमेंट विद Oman on a plan to manage the transit of ships through the Strait of Hormuz, and the two sides are now working to finalize details for a joint statement. Talking to reporters in Tehran, Iranian Foreign Affairs spokesperson Ismail Baghai said an understanding has been reached regarding the map of the transit route. Fully reopening the waterway to commercial shipping has been a key demand of the United States, but it remains unclear whether the deal will meet with Washington's criteria. Let's move to the next story. The government has approved 31 more applications under the Electronics Components Manufacturing Scheme, or ECMS, with projected investment of 7,877 crore rupees. These approvals are expected to generate over 9,500 employment opportunities. These applications have come from 10 states, including 7 from Tamil Nadu and 6 each from Maharashtra and Haryana. Union Minister of Electronics and Information Technology Ashwini Vaishnav handed over the approvals to the applicants at a function in New Delhi. The applications are related to the manufacture of products including acetylene black, speakers and microphones, optical transceivers and capacitors and coils. And the next call is coming in from Gurugram. Mukesh has joined us online. Mukesh, welcome to the program. Please ask your question.
4: Yeah, thank you, ma'am. Good evening. So my question is that my previous employer, it is related to EPF, has stopped giving me interest on my deposit amount because I attained the age of 58, but I'm still continuing job at the age of 59. Kindly help me, is it the right thing or do I am supposed to get the interest from the previous employer? I tried transferring, but because of administrative reason, I could not transfer.
2: Well, Mukesh, I would suggest in such a case you should contact the Provident Fund authorities, because at the end of the day, you know, all the recognized Provident Funds are administered by the PFRDA, you know, Provident Fund Regulatory Development Authority. So you can reach out to them. They will ensure transfer also and the stoppage of your interest, because you've retired from there, so obviously they don't want to bear the interest liability. But I'm sure once you transfer and you continue to work, there is no such law that after 58 if you work, your PF is not going to give you interest. So just reach out to the nearest, and it's all online these days. It's going to be quite easy, Mukesh. Right.
3: Let's move on to commodities. Global crude oil prices rose today. Brent crude was trading 0.4% up at $88.90 per barrel in intraday trade. West Texas Intermediate crude was trading 0.1% up at $82.50 per barrel when reports last came in.

0: एंड आई लुक एट द गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस. निखिल,
1: भारतीय सराफा बाजार में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1.2% बढ़कर 1,54,167 रुपए प्रति 10 ग्राम पर हो गई. वहीं चांदी की कीमत 0.8% बढ़कर 2,35,642 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी. शरद, अगर हम क्रूड ऑयल की बात करते हैं तो आपको क्या लगता है कि वर्तमान जो स्थिति है, क्या इससे और ज्यादा आगे बढ़ने की संभावना नजर आती है इससे नीचे, और ऐसी स्थिति में हमारे मार्केट पर किस तरह का असर आप देख रहे हैं?
2: क्रूड ऑयल में तो अभी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जो बयान आ रहे हैं दोनों तरफ से, ईरान ने यहां तक कह दिया जब तक राष्ट्रपति ट्रंप बने रहेंगे युद्ध चलता रहेगा. राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि हमारे मिड टर्म तक उम्मीद रखिए. उन्होंने अपने नागरिकों को कहा है कि आप हायर प्राइसेस के लिए तैयार रहिए मिड टर्म तक. तो मुझे लग रहा है अभी कुछ भी संभावना है, जैसे बोलते हैं अभी कुछ भी हो सकता है. युद्ध में कुछ नहीं कहा जा सकता. $90 है और खतरनाक होगा भारत जैसी अर्थव्यवस्थाओं के लिए. अगर ये $100 और उसके बाद जाता है हमारा इम्पोर्ट बिल, ट्रेड डेफिसिट, रुपए पर प्रेशर, वो सारी दिक्कतें फिर वापस आती क्या पूरी तरह से तो अभी गई नहीं है, पर और ज्यादा एग्रवेट होती हमें यहाँ से दिखाई दे सकती है. और चाइना है, कोरिया है, इनके लिए दिक्कत आ सकती है.
1: शरद जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए और श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद.
2: शुक्रिया, थैंक यू.
0: And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic indices fall, Sensex slips nearly 300 points, Nifty settles below 24,300. SEBI chief backs continuation of closing auction session, says regulator will review industry feedback and make necessary changes. And global crude oil prices rise. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. Namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.
4: You were listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 p.m.

अभिनेत्री फिल्म से आपने ये गीत सुना, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। और मैं रितिका आप सभी का स्वागत करती हूँ कार्यक्रम गीत मेरे मनमीत में।

तो दोस्तों, गीत मेरे मन मीत में बस इतना ही। राखी आ चुकी है स्टूडियो में निशिगंधा लेकर। छोड़े जाती हूँ आप सभी को उन्हीं के साथ। अपनी दोस्त रितिका को दीजिए इजाजत। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल, सिर्फ और सिर्फ 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी आतंकवादी नेटवर्क को ध्वस्त कर 200 से अधिक आतंकवादियों को गिरफ्तार किया और उसके हमलों की साजिश नाकाम की। सुरक्षा बलों ने 14 राज्यों में समन्वित अभियान चलाकर कार्रवाई की। ये कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ केंद्र सरकार की सख्त नीति को दर्शाती है। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में करीब 7,900 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। ये प्रस्ताव 10 राज्यों से मिले हैं, जिनमें तमिलनाडु से 7, महाराष्ट्र और हरियाणा से 6-6 प्रस्ताव शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में कल आयोजित कार्यक्रम में प्रस्तावकों को मंजूरी पत्र सौंपे। श्री वैष्णव ने कहा कि इन परियोजनाओं से रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
1: इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम में 106 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो चुके हैं। इन एक प्रोजेक्ट्स में 69,548 करोड़ इन्वेस्टमेंट आ रहा है और 2.5 लाख लोगों को टोटल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिला के इन फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जिस स्कीम में 31 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं, बहुत तेजी से इंडस्ट्री ने अपना इन्वेस्टमेंट लगाकर 38 प्रोजेक्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग और ऑलरेडी चालू कर दी है और 16 प्रोजेक्ट्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि इन परियोजनाओं में एसिटिलीन ब्लैक स्पीकर और माइक्रोफोन, ऑप्टिकल ट्रांसीवर, कैपेसिटर और कॉइल जैसे उत्पादों का विनिर्माण शामिल है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास और कार्यान्वयन ट्रस्ट के शीर्ष निगरानी प्राधिकरण की तीसरी बैठक आयोजित की गई। इसमें औद्योगिक बुनियादी ढांचा तेजी से पूरा करने, भूमि आवंटन, निवेश बढ़ाने और उत्पादन शुरू करने पर बल दिया गया। उन्होंने कहा कि अब ध्यान सिर्फ आधारभूत संरचना को मंजूरी देने तक सीमित नहीं है, बल्कि उससे आगे बढ़कर आधारभूत संरचना को समय पर पूरा करने, जमीन के आवंटन, निवेश और उत्पादन शुरू करने पर होना चाहिए। उन्होंने राज्यों से जमीन उपयोग, कानूनी मंजूरी और परियोजना विशिष्ट विशेष प्रयोजन वाहन एसपीवी की शक्तियों से जुड़ी रुकावटों को दूर करने का आग्रह किया। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल नई दिल्ली में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान श्री जोशी ने स्थापित परीक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने गोपनीय संचालन व्यवस्था में व्यापक सुधार करने को कहा।

0: उन्होंने सुरक्षित कक्षों और एयर गैप्ड सिस्टम को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जमा करने संबंधी प्रोटोकॉल में भी व्यापक सुधार युद्ध स्तर पर लागू करने को कहा। श्री जोशी ने एजेंसी को सभी परीक्षा प्रक्रियाओं का व्यापक निरीक्षण कराने का निर्देश दिया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कल पार्टी के नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा की। श्री नवीन ने वसुंधरा राजे, सिंधिया, तीरथ सिंह रावत, राम माधव, बैजयंत जय पांडा, सरदार मनप्रीत सिंह बादल और रेखा वर्मा सहित 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की नियुक्ति की है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता पीयूष गोयल को पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री बीएल संतोष को संगठनात्मक राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। श्री नवीन ने विनोद तावड़े, सुनील बंसल, स्मृति ईरानी और बिप्लव कुमार देब सहित 8 पार्टी नेताओं को राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान को चेतावनी दी है कि वो हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर नियंत्रण को लेकर ईरान के साथ किसी समझौते में शामिल न हो। उन्होंने कहा कि अगर ओमान इस अहम समुद्री रास्ते पर अमेरिका के रुख में दखल देता है तो उस पर बमबारी की जाएगी। पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी नई दिल्ली में आयोजित BWF विश्व चैंपियनशिप के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। सिंधु ने महिला सिंगल्स में आयरलैंड की सोफिया नोबल को और आयुष ने पुरुष सिंगल्स में चीन के शी युकी को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renuka. Union Home Minister Amit Shah has informed that the government under the leadership of Prime Minister Narendra Modi destroyed the ISI-backed terror group Shehzad Bhatti Network ahead of Independence Day. He informed that the government also thwarted its plans for subversive attacks by arresting more than 200 operatives. In a social media post, he said that security forces ripped apart the network by launching coordinated operation across different locations in 14 states, upholding a brilliant example of India's zero tolerance towards terrorism. The security agencies launched a coordinated multi-state operation on 12th of this month using a real-time intelligence sharing system with state police forces to counter Shehzad Bhatti network-linked disruptions. The network was involved in several terrorist activities. Shehzad Bhatti Network, a Pakistan-based ISI-backed terror syndicate linked to grenade, IED and petrol bomb attacks and targeted killings across India. In Jharkhand, following a 24-day protest by JPSC and JSSC aspirants, the state government has cancelled the 2024 JSSC CGL examination and all competitive examinations conducted by the TDPL agency. Chief Minister Hemant Soren announced the decision last evening after chairing a special cabinet meeting. The state government has also ordered a comprehensive probe into recruitment examinations conducted by the Jharkhand Public Service Commission, JPSC, and the Jharkhand Staff Selection Commission, JSSC, since 2014. However, student leader Piyush Kumar stated that the protesters' demands regarding the 11th to 13th JPSC examinations and a CBI probe are still pending. The protesting students announced they would discuss their remaining demands and decide their next course of action. Education Minister Prahlad Joshi held a meeting with the Secretary, Department of Higher Education, DG of National Testing Agency, NTA, and other senior officials in New Delhi yesterday. During the meeting, the minister directed that strict compliance be ensured of the established exam protocols. He also directed that a complete overhaul of confidential operations architecture, secluded rooms, air-gapped systems, device deposit protocols be implemented on a war footing. The agency has been further directed to conduct a thorough audit of all exam processes and submit a report on corrective action taken. The Qatar inter-remittance service based on post-transfer powered by UPI is now available. It enables customers in Qatar to send funds directly to UPI-enabled banks' accounts in India through Qatar Post outlets. The Communications Ministry said that the service offers an instant, secure, convenient, and accessible channel for cross-border remittances, particularly

वक्त हुआ है 12:10 और ठीक 57 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर निशिगंधा, मैं हूँ राखी आपके साथ।

प्यार का मौसम फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया आर डी बर्मन ने। निशिगंधा, रात की खामोशी में घुलती हुई मधुर धुनों का नाम, यादों की उन गलियों में लौट जाने का बहाना, जहां हर गीत अपने साथ एक कहानी लेकर आता है। कुछ गीत मोहब्बत की पहली दस्तक है, कुछ बिछड़ने की कसक, कुछ गीत बीते दिनों की तस्वीरें आंखों के सामने सजा देते हैं, तो कुछ यूं लगते हैं जैसे कोई अपना कुछ दूरी से ही सही आवाज दे रहा है।

अनामिका फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। मजरूह सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया आरडी बर्मन ने। तो आइए इस सुहानी रात में बीते जमाने के उन सदाबहार नगमों के साथ कुछ पल बिताएं, जिन्हें सुनकर वक्त थम सा जाता है और दिल कह उठता है। कुछ गीत कभी पुराने नहीं होते, वो बस हमारी यादों में और गहरे उतर जाते हैं।

अभिनेत्री फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। मधुर सुरों से सजी ये गीत जब कानों में रस खोलते हैं तो मन की सारी थकान जैसे पल भर में मिट जाती है। हर धुन अपने साथ यादों की कोई मीठी तस्वीर ले आती है और दिल को सुकून से भर देती है। ऐसे ही सदाबहार गीतों के साथ सजती है संगीत की ये सुहानी महफिल।

गैम्बलर फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज़ में। कवि नीरज ने इसे लिखा और संगीत दिया एसडी बर्मन ने। जब दिल में कोई मीठी सी हलचल हो, यादों में कोई अपना उतर आए और हर धड़कन कोई अनकही बात कहने लगे, तो दिल शायर हो ही जाता है।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

वक्त हुआ है 12:31 और ठीक 54 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर इस वक्त आप सुन रहे हैं निशिगंधा। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

कॉलेज गर्ल फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। शिव कुमार सरोज ने इसे लिखा और संगीत दिया बप्पी लाहिड़ी ने। प्यार जब दिल से निकलता है तो उसे कहने के लिए बहुत ज्यादा शब्दों की जरूरत नहीं होती। कभी एक नजर, कभी एक मुस्कान और कभी कोई मीठा सा गीत ही दिल की पूरी कहानी कह जाता है।

बजते खिलौने फिल्म का गाना आपने सुना येसुदास की आवाज में। कैफी आजमी ने इसे लिखा और संगीत दिया बप्पी लाहिड़ी ने। हुस्न की तारीफ हो और अंदाज में थोड़ी सी शरारत ना हो तो बात अधूरी सी लगती है। कभी दो दिलों के बीच प्यार भरी नोकझोंक तो कभी एक दूसरे को पसंद करने का खूबसूरत इकरार, यही तो मोहब्बत को और भी दिलकश बना देता है।

रॉकी फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया आर डी बर्मन ने। जब किसी की मौजूदगी की आदत दिल को लग जाए तो उसकी गैर मौजूदगी हर पल महसूस होती है। घड़ी की सुइयां चलती तो हैं मगर वक्त जैसे ठहर सा जाता है। हर ख्याल उसी के इर्द गिर्द घूमता है और दिल बार बार बस यही सवाल करता है, आखिर ये कैसा एहसास है।

प्रेम बंधन फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। वक्त हुआ है 12:57 और ठीक 40 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 1 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 1:10 पर गीत सुहाने मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी आतंकवादी नेटवर्क को ध्वस्त कर 200 से अधिक आतंकवादियों को गिरफ्तार किया और उसके हमलों की साजिश नाकाम की। सुरक्षा बलों ने 14 राज्यों में समन्वित अभियान चलाकर कार्रवाई की। ये कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ केंद्र सरकार की सख्त नीति को दर्शाती है। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में करीब 7,900 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। ये प्रस्ताव 10 राज्यों से मिले हैं, जिनमें तमिलनाडु से 7, महाराष्ट्र और हरियाणा से 6-6 प्रस्ताव शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में कल आयोजित कार्यक्रम में प्रस्तावकों को मंजूरी पत्र सौंपे। श्री वैष्णव ने कहा कि इन परियोजनाओं से रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
1: इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम में 106 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो चुके हैं। इन एक प्रोजेक्ट्स में 69,548 करोड़ इन्वेस्टमेंट आ रहा है और 2.5 लाख लोगों को टोटल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिला के इन फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जिस स्कीम में 31 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं, बहुत तेजी से इंडस्ट्री ने अपना इन्वेस्टमेंट लगाकर 38 प्रोजेक्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग और ऑलरेडी चालू कर दी है और 16 प्रोजेक्ट्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास और कार्यान्वयन ट्रस्ट के शीर्ष निगरानी प्राधिकरण की तीसरी बैठक आयोजित की गई। इसमें औद्योगिक बुनियादी ढांचा तेजी से पूरा करने, भूमि आवंटन निवेश बढ़ाने और उत्पादन शुरू करने पर बल दिया गया। उन्होंने कहा कि अब ध्यान सिर्फ आधारभूत संरचना को मंजूरी देने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उसे आगे बढ़कर आधारभूत संरचना को समय पर पूरा करने, जमीन के आवंटन, निवेश और उत्पादन शुरू करने पर होना चाहिए। शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कल नई दिल्ली में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान श्री जोशी ने स्थापित परीक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने गोपनीय संचालन व्यवस्था में व्यापक सुधार करने को कहा। उन्होंने सुरक्षित कक्षों और एयर गैप्ड सिस्टम को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जमा करने संबंधी प्रोटोकॉल में भी व्यापक सुधार युद्ध स्तर पर लागू करने को कहा। श्री जोशी ने एजेंसी को सभी परीक्षा प्रक्रियाओं का व्यापक निरीक्षण कराने का निर्देश दिया है। रिजर्व बैंक ने धन के प्रवाह की मौजूदा और बदलती स्थितियों की कल समीक्षा के बीच आज के लिए 15 लाख करोड़ रुपए तक की वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो VRRR नीलामी की घोषणा कर दी है। एक विज्ञप्ति के अनुसार नीलामी आज सुबह 9:30 बजे से 10 बजे के बीच आयोजित की जाएगी और धनराशि 19 अगस्त को वापस होगी। ये घोषणा रिजर्व बैंक द्वारा सोमवार को आयोजित 2 VRR नीलामियों के बाद की गई है। पहली नीलामी में रिजर्व बैंक ने 1 लाख करोड़ रुपए की अधिसूचित राशि के मुकाबले 96,914 करोड़ रुपए 5.24% की कट ऑफ दर पर स्वीकार किए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान को

वक्त हुआ है 1:10 और ठीक 57 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। गीत सुहाने, मैं हूं राखी आपके साथ।

हसीना मान जाएगी फिल्म का गाना आपने सुना रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में। अख्तर रोमानी ने इसे लिखा और संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने। बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम, दिल को फिर होश कहाँ, राह का पता कहाँ, तेरी चाहत ने कुछ यूं थाम लिया दिल को कि जहाँ भी गए बस तेरा ही ख्याल साथ चला।

ये रात फिर ना आएगी। आशा भोसले की आवाज में आपने ये गीत सुना। एसएच बिहारी ने इसे लिखा और संगीत दिया ओपी नैयर ने। आज भी इन हवाओं में उस मुलाकात की खुशबू बसी है और इस खामोश फिजा में जैसे वो गुजरा हुआ पल फिर से मुस्कुरा उठता है। वक्त आगे बढ़ गया, मौसम बदल गए, मगर उस मुलाकात की याद आज भी दिल में उसी तरह महकती है।

जाइए आप कहाँ जाएंगे, ये नजर लौट कर फिर आएगी। आपकी यादों की महक हर पल दिल को छू जाएगी। दूर जाने से भला कहाँ कम होता है किसी का इंतजार। आप जहाँ भी जाएंगे ये दिल आपको पुकारता रह जाएगा। मेरे सनम फिल्म का गाना आपने सुना आशा भोसले की आवाज़ में। मजरूह सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया ओपी नैयर ने।

लेवन टोक्यो फिल्म का गाना आपने सुना रफ़ी की आवाज़ में। हजरत जयपुरी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने।

वक्त हुआ है 1:34 और ठीक 10 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर इस वक्त आप सुन रहे हैं गीत सुहाने। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म से आपने गाना सुना। रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में राजा मेहदी अली खान ने इसे लिखा और संगीत दिया ओपी नैयर ने। कभी कभी किसी से बार बार मिलना महज एक इत्तेफाक नहीं रहता, हर मुलाकात दिल में एक नई हलचल लगा जाती है। न जाने कब अनजाने में किसी की आदत हो जाती है और कब वही आदत मोहब्बत की शक्ल ले लेती है।

शम्मा की लौ भी बेकरार है उसे अपने पास बुलाने को, और परवाना भी चला है उसी आग में खुद को मिटाने को। इश्क की ये कैसी कशिश है, कैसी है कहानी दिल लगाने की। खुद ढूंढ रही है शम्मा जिसे, क्या बात है उस परवाने की। फिर वही दिल लाया हूँ फिल्म का गाना आपने सुना आशा भोसले की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया ओपी नैयर ने।

प्रोफेसर फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर और रफी की आवाज में। अनजान ने इसे लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने।

वक्त हुआ है 1:46 और ठीक 15 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर इस वक्त आप सुन रहे हैं गीत सुहाने। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

मोहब्बत इसको कहते हैं। फिल्म से आपने ये गीत सुना, रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में। मजरूह ने इसे लिखा और संगीत दिया खयाम ने। ज़रा दिल को संभलने दीजिए, फिर चले जाइए। आपसे मिलकर यूं लगा जैसे कोई ख्वाब उतर आया हो। इन खूबसूरत पलों को ज़रा आँखों में ठहर जाने दीजिए। जाने की इतनी भी क्या जल्दी है आपको, दिल की बात पूरी हो जाए फिर चले जाइए।

दिल एक मंदिर फिल्म का गाना आपने सुना रफी की आवाज में। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने।

पुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने। वक्त हुआ है 1:55 और ठीक 7 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 2 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 2:10 पर रात सुरमई मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी आतंकवादी नेटवर्क को ध्वस्त कर 200 से अधिक आतंकवादियों को गिरफ्तार किया और उसके हमलों की साजिश नाकाम की। सुरक्षा बलों ने 14 राज्यों में समन्वित अभियान चलाकर कार्रवाई की। ये कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ केंद्र सरकार की सख्त नीति को दर्शाती है। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में करीब 7,900 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। ये प्रस्ताव 10 राज्यों से मिले हैं, जिनमें तमिलनाडु से 7, महाराष्ट्र और हरियाणा से 6-6 प्रस्ताव शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में कल आयोजित कार्यक्रम में प्रस्तावकों को मंजूरी पत्र सौंपे। श्री वैष्णव ने कहा कि इन परियोजनाओं से रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
1: इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम में 106 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो चुके हैं। इन एक प्रोजेक्ट्स में 69,548 करोड़ इन्वेस्टमेंट आ रहा है और 2.5 लाख लोगों को टोटल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिला के इन फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जिस स्कीम में 31 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं, बहुत तेजी से इंडस्ट्री ने अपना इन्वेस्टमेंट लगाकर 38 प्रोजेक्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग और ऑलरेडी चालू कर दी है और 16 प्रोजेक्ट्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि इन परियोजनाओं में एसिटिलीन ब्लैक स्पीकर और माइक्रोफोन, ऑप्टिकल ट्रांसीवर, कैपेसिटर और कॉयल जैसे उत्पादों का विनिर्माण शामिल है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास और कार्यान्वयन ट्रस्ट के शीर्ष निगरानी प्राधिकरण की तीसरी बैठक आयोजित की गई। इसमें औद्योगिक बुनियादी ढांचा तेजी से पूरा करने, भूमि आवंटन, निवेश बढ़ाने और उत्पादन शुरू करने पर बल दिया गया। उन्होंने कहा कि अब ध्यान सिर्फ आधारभूत संरचना को मंजूरी देने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उससे आगे बढ़कर आधारभूत संरचना को समय पर पूरा करने, जमीन के आवंटन, निवेश और उत्पादन शुरू करने पर होना चाहिए। उन्होंने राज्यों से जमीन उपयोग, कानूनी मंजूरी और परियोजना विशिष्ट विशेष प्रयोजन वाहन एसपीवी की शक्तियों से जुड़ी रुकावटों को दूर करने का आग्रह किया। उत्तर प्रदेश में 5 दिन तक चलने वाले निवेश सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन में 200 से अधिक प्रमुख जापानी उद्योगपति, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, व्यावसायिक प्रतिनिधि और नीति निर्माता भाग लेंगे। इसमें राज्य सरकार का उद्देश्य जापानी कंपनियों की व्यावसायिक रुचि को ठोस निवेश, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, संयुक्त परियोजनाओं और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन में परिवर्तित करना है। प्रतिनिधिमंडल विनिर्माण, स्वच्छ और हरित ऊर्जा, सेमीकंडक्टर, डिजिटल अवसंरचना, कौशल विकास और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में अवसरों का पता लगाएगा। कल नई दिल्ली में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जापानी प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करेंगे। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय बुधवार को गुजरात के गांधीनगर में 2 दिवसीय ब्रिक्स युवा परिषद की बैठक और ब्रिक्स युवा शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। युवा शिखर सम्मेलन और युवा परिषद की बैठक ब्रिक्स सदस्य और भागीदारी देशों के युवा नेताओं, नवप्रवर्तकों, उद्यमियों, स्वयंसेवकों और परिवर्तनकर्ताओं को एक साथ लाएगी। मंत्रालय ने कहा कि विषयगत चर्चाओं, संवाद सत्रों और संपर्क बढ़ाने के अवसरों के माध्यम से शिखर सम्मेलन युवाओं को विचारों का आदान प्रदान करने, समाधान प्रस्तुत करने और व्यापक ब्रिक्स प्रक्रिया के भीतर विचार के लिए सिफारिशें विकसित करने के लिए मंच प्रदान करेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल देहरादून में एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2026 का उद्घाटन किया। ये प्रतियोगिता गुरुवार तक चलेगी। इसमें 14 देशों के 270 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं और पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी नई दिल्ली में आयोजित बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं।

वक्त हुआ है 2:10, वक्त हुआ है 2:11 और ठीक 3 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर रात सुरमई, मैं हूं राखी आपके साथ।

रोटी कपड़ा और मकान फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में। संतोष आनंद ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इन कस्मों को, इन रिश्ते नातों को मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी। जिंदगी चाहे कितने ही मोड़ ले, वक्त चाहे हमें कितने भी दूर कर दे एक दूसरे से, मगर दिल में बसे इन रिश्तों की मिठास और साथ बिताए वो अनमोल पल हम कभी नहीं भूलेंगे।

बॉबी फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। कभी कभी मोहब्बत का सबसे हसीन रंग वही होता है जो पास होकर नहीं दूर रहकर महसूस होता है।

प्यासा सावन फिल्म का गाना आपने सुना। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज में संतोष आनंद ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

वक्त हुआ है 2:31 और ठीक 19 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर रात सुरमई, मैं हूं राखी आपके साथ। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

रजिया सुल्तान फिल्म से आपने गाना सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। कैफी आजमी ने इसे लिखा और संगीत दिया खयाम ने। सूनी सूनी इन आंखों में फिर से कोई हसीन ख्वाब सजाए। दिल की जमी मुद्दत से प्यासी है, कोई घटा बनकर आए और मोहब्बत की बारिश बरसाए।

फिल्म अपनापन का आपने ये गीत सुना, रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। कोई पल बनकर दिल में ठहर जाता है, कोई रिश्ता बनकर उम्र भर साथ चलता है। रास्ते बदल जाते हैं, मंजिलें बदल जाती हैं, मगर बीते हुए लम्हों की खुशबू कभी कम नहीं होती। शायद जिंदगी का यही दस्तूर है, हम चले जाते हैं मगर हमारी यादें किसी के दिल में हमेशा जिंदा रहती हैं।

हम भूल गए रे हर बात, मगर तेरा प्यार नहीं भूले। कितनी गहरी बात है। जिंदगी आगे बढ़ती रही, मौसम बदलते रहे, मगर दिल में बसी उस मोहब्बत की याद आज भी वैसी ही है। कुछ प्यार भुलाए नहीं जाते, बस उम्र भर चुपचाप दिल में बसे रहते हैं। सौतन की बेटी फिल्म का आपने ये गीत सुना लता मंगेशकर की आवाज में। सावन कुमार ने इसे लिखा और संगीत दिया वेदपाल ने।

सौतन फिल्म का गाना आपने सुना। लता मंगेशकर की आवाज में सावन कुमार ने इसे लिखा और संगीत दिया उषा खन्ना ने। वक्त हुआ है 2:55 और ठीक 21 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 3 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 3:10 पर हमराही भारती शर्मा के साथ। तो इसी के साथ अब राखी को इजाजत।

की आवाज में सावन कुमार ने इसे लिखा और संगीत दिया उषा खन्ना ने। वक्त हुआ है 2:55 और ठीक 21 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 3 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 3:10 पर हमराही भारती शर्मा के साथ। तो इसी के साथ अब राखी को इजाजत दीजिए।

0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी आतंकवादी नेटवर्क को ध्वस्त कर 200 से अधिक आतंकवादियों को गिरफ्तार किया और उसके हमलों की साजिश नाकाम की। सुरक्षा बलों ने 14 राज्यों में समन्वित अभियान चलाकर कार्रवाई की। ये कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ केंद्र सरकार की सख्त नीति को दर्शाती है। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में करीब 7,900 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। ये प्रस्ताव 10 राज्यों से मिले हैं, जिनमें तमिलनाडु से 7, महाराष्ट्र और हरियाणा से 6-6 प्रस्ताव शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में कल आयोजित कार्यक्रम में प्रस्तावकों को मंजूरी पत्र सौंपे। श्री वैष्णव ने कहा कि इन योजनाओं से रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
1: इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम में 106 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो चुके हैं। इन एक प्रोजेक्ट्स में 69,548 करोड़ इन्वेस्टमेंट आ रहा है और 2.5 लाख लोगों को टोटल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिला के इन फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जिस स्कीम में 31 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं, बहुत तेजी से इंडस्ट्री ने अपना इन्वेस्टमेंट लगाकर 38 प्रोजेक्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग और ऑलरेडी चालू कर दी है और 16 प्रोजेक्ट्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं।
0: झारखंड सरकार ने 2024 की जेएसएससी सीजीएल परीक्षा और टीडीपीएल एजेंसी द्वारा आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा के उम्मीदवारों के 24 दिनों के विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार का ये निर्णय आया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल शाम कैबिनेट की एक विशेष बैठक के बाद इस फैसले की घोषणा की। राज्य सरकार ने झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 2014 से आयोजित भर्ती परीक्षाओं की व्यापक जांच के आदेश भी दिए हैं। उत्तर प्रदेश में 5 दिन तक चलने वाले निवेश सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन में 200 से अधिक प्रमुख जापानी उद्योगपति, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, व्यावसायिक प्रतिनिधि और नीति निर्माता भाग लेंगे। इसमें राज्य सरकार का उद्देश्य जापानी कंपनियों की व्यावसायिक रुचि को ठोस निवेश, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, संयुक्त परियोजनाओं और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन में परिवर्तित करना है। प्रतिनिधिमंडल विनिर्माण, स्वच्छ और हरित ऊर्जा, सेमीकंडक्टर, डिजिटल अवसंरचना, कौशल विकास और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में अवसरों का पता लगाएगा। आज नई दिल्ली में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जापानी प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करेंगे। ये उत्तर प्रदेश और जापान के बीच निवेश तथा तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित 5 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण 87 सड़कें बंद हो गई और चंबा जिले में लोहे का एक पुल ढह गया। भरमौर इलाके की बलोथ ग्राम पंचायत में अचानक आई बाढ़ लोहे के पुल को बहा ले गई, जिससे लगभग 50 तीर्थयात्री फंस गए। ये सभी लोग भरमौर में मां भगवती खुंडी वाली मंदिर जा रहे थे। तेज बहाव से रास्ता खराब होने के बाद ग्रामीणों ने उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए लकड़ी का एक अस्थायी पैदल पुल बनाया। मौसम विभाग ने आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर जिलों में भारी बारिश का अनुमान है। नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत के आयुष शेट्टी ने दुनिया के नंबर 1 चीनी खिलाड़ी और मौजूदा चैंपियन शियू की को हरा दिया। पुरुष एकल के पहले राउंड में आयुष शेट्टी ने एक रोमांचक मुकाबले में यूकी को 21-14, 13-21, 21-19 से हराया। महिला एकल में पीवी सिंधु और महिला युगल में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी भी दूसरे राउंड में पहुंच गई। इससे पहले पुरुष युगल की जोड़ी एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन भी दूसरे राउंड में पहुंच गए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और समय हो गया है प्रोग्राम हमराही का। मैं हूं आज आपके साथ आपकी दोस्त भारती और शुरुआत करते हैं प्रोग्राम हमराही की।

रात जितनी गहरी होती जाती है, कुछ यादें उतनी ही करीब आती जाती हैं। कभी कभी बरसों बाद भी किसी की एक मुस्कान दिल में वैसे ही ताज़ा रहती है जैसे उससे अभी अभी मुलाकात हुई हो।

रिश्ते सिर्फ कस्में और वादों से नहीं, बल्कि एक दूसरे की खामोशी समझने से खूबसूरत बनते हैं। सच्चा प्यार वो है जिसमें वक्त बदल जाए मगर दिल का भरोसा ना बदले।

कुछ लोग जिंदगी में आते हैं और बिना कुछ कहे दिल में अपनी जगह बना लेते हैं। उनकी यादों का कोई पता नहीं होता, मगर रात की तन्हाइयों में उनका एहसास अक्सर सबसे ज्यादा महसूस होता है।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

दिल की हर बात जुबां तक आ जाए ऐसा जरूरी तो नहीं। कुछ मोहब्बतें शब्दों की मोहताज नहीं होती। आंखों की एक झलक और खामोशी का एक पल ही बहुत कुछ कह जाता है।

रात के इस सन्नाटे में अगर कोई चेहरा बार बार याद आ रहा है तो शायद वो सिर्फ याद नहीं, दिल का वो खूबसूरत कोना है जहाँ किसी अपने की मौजूदगी आज भी कायम है।

0: मोहब्बत में दीवानगी का मतलब सिर्फ किसी को पाना नहीं, बल्कि उसकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढ लेना भी है। जिसे दिल सच्चाई से चाहे, उसकी मुस्कान दूर रहकर भी दिल को सुकून दे सकती है। और इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। 4:10 पर फिर से हाजिर होंगे लेकर प्रोग्राम अरुणिमा। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति और आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर इस प्यारे से गीत के साथ।
1: बात पहरा होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है।

या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है। ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी आतंकवादी नेटवर्क को ध्वस्त कर 200 से अधिक आतंकवादियों को गिरफ्तार किया और उसके हमलों की साजिश नाकाम की। सुरक्षा बलों ने 14 राज्यों में समन्वित अभियान चलाकर कार्रवाई की। ये कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ केंद्र सरकार की सख्त नीति को दर्शाती है। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में करीब 7,900 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। ये प्रस्ताव 10 राज्यों से मिले हैं, जिनमें तमिलनाडु से 7, महाराष्ट्र और

0: हरियाणा से छह छह प्रस्ताव शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में कल आयोजित कार्यक्रम में प्रस्तावकों को मंजूरी पत्र सौंपे। श्री वैष्णव ने कहा कि इन परियोजनाओं से रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
1: इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम में 106 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो चुके हैं। इन एक प्रोजेक्ट्स में 69,548 करोड़ इन्वेस्टमेंट आ रहा है और 2.5 लाख लोगों को टोटल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिला के इन फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जिस स्कीम में 31 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं, बहुत तेजी से इंडस्ट्री ने अपना इन्वेस्टमेंट लगाकर 38 प्रोजेक्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग और ऑलरेडी चालू कर दी है और 16 प्रोजेक्ट्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं।
0: झारखंड सरकार ने 2024 की जेएसएससी सीजीएल परीक्षा और टीडीपीएल एजेंसी द्वारा आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा के उम्मीदवारों के 24 दिनों के विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार का ये निर्णय आया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल शाम कैबिनेट की एक विशेष बैठक के बाद इस फैसले की घोषणा की। राज्य सरकार ने झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 2014 से आयोजित भर्ती परीक्षाओं की व्यापक जांच के आदेश भी दिए हैं। उत्तर प्रदेश में 5 दिन तक चलने वाले निवेश सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन में 200 से अधिक प्रमुख जापानी उद्योगपति, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, व्यावसायिक प्रतिनिधि और नीति निर्माता भाग लेंगे। इसमें राज्य सरकार का उद्देश्य जापानी कंपनियों की व्यावसायिक रुचि को ठोस निवेश, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, संयुक्त परियोजनाओं और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन में परिवर्तित करना है। प्रतिनिधिमंडल विनिर्माण, स्वच्छ और हरित ऊर्जा, सेमीकंडक्टर, डिजिटल अवसंरचना, कौशल विकास और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में अवसरों का पता लगाएगा। आज नई दिल्ली में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जापानी प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करेंगे। ये उत्तर प्रदेश और जापान के बीच निवेश तथा तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित कार्यक्रम का शुभारम्भ होगा। दिल्ली सरकार स्नातक, स्नातकोत्तर और अति विशिष्ट चिकित्सा सीटों के चरणबद्ध विस्तार के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी में चिकित्सा शिक्षा क्षमता बढ़ाने के लिए तैयार है। इस कार्य योजना के हिस्से के रूप में सरकार ने त्रिआयामी दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें नई परियोजनाएं, पुराने संस्थानों का विकास और स्नातकोत्तर व उच्च चिकित्सा पाठ्यक्रमों का विस्तार शामिल है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण 87 सड़कें बंद हो गई हैं और चंबा जिले में लोहे का एक पुल ढह गया। भरमौर इलाके की बलोथ ग्राम पंचायत में अचानक आई बाढ़ लोहे के पुल को बहा ले गई, जिससे लगभग 50 तीर्थयात्री फंस गए। ये सभी लोग भरमौर में मां भगवती खुंडी वाली मंदिर जा रहे थे। मौसम विभाग ने आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर जिलों में भारी बारिश का अनुमान है। नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत के आयुष शेट्टी ने दुनिया के नंबर एक चीन के खिलाड़ी और मौजूदा चैंपियन शियू की को हरा दिया। पुरुष एकल के पहले राउंड में आयुष शेट्टी ने एक रोमांचक मैच में शियू की को 21-14, 13-21, 21-19 से हराया। महिला एकल में पीवी सिंधु और महिला युगल में त्रिशा जौहली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी भी दूसरे राउंड में पहुंच गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. Union Home Minister Amit Shah has informed that the government under the leadership of Prime Minister Narendra Modi destroyed the ISI-backed terror group Shahzad Bhatti Network ahead of Independence Day. He informed that the government also thwarted its plans for subversive attacks by arresting more than 200 operatives. In a social media post, he said that security forces ripped apart the network by launching coordinated operations across different locations in 14 states, upholding a brilliant example of India's zero tolerance towards terrorism. The security agencies launched a coordinated multi-state operation on 12th of this month using a real-time intelligence sharing system with the state police forces to counter Shahzad Bhatti network-linked disruptions. The network was involved.

एक बार फिर से आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और समय हो गया है प्रोग्राम अरुणिमा का। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की फिल्म मेरा नाम जोकर के इस प्यारे से गीत के साथ। गीत है को अपनी आवाज़ से सजाया है मुकेश ने, संगीतकार शंकर जयकिशन, गीतकार हसरत जयपुरी।

प्रोग्राम का अगला गीत सुनते हैं फिल्म उपकार से लता मंगेशकर की आवाज में, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी, गीतकार गुलशन बावरा।

अभी आपने गीत सुना फिल्म शेषनाग से अनुराधा पोडवाल सुरेश वाडकर की आवाज में, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं अगला गीत फिल्म तोहफा से किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में, साथ में बेबी कविता। गीतकार इंदिवर, संगीतकार बप्पी लहरी।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और प्रोग्राम है अरुणिमा, और इसी को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं अगला गीत फिल्म अनुरोध से किशोर कुमार की आवाज में। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

अभी आपने गीत सुना फिल्म कंगन से महेंद्र कपूर उषा खन्ना की आवाज में, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी, गीतकार अनजान। आगे बढ़ते हैं सुनते अगला गीत फिल्म प्रेम धर्म से लता मंगेशकर की आवाज में।

और इस समय कह रहा कि अब आपसे अनुमति ले ली जाए। जाने से पहले यही कहूंगी कि आप कहीं मत जाइएगा, आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। और छोड़ के जा रही हूँ इस गीत के साथ, गीत है फिल्म सत्या से लता मंगेशकर की आवाज में, संगीतकार विशाल, गीतकार गुलजार। जल्द हाजिर होती हूँ, तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। झारखंड सरकार ने 2024 की जेएसएससी सीजीएल परीक्षा और टीडीपीएल एजेंसी द्वारा आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा के उम्मीदवारों के 24 दिनों के विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार का यह निर्णय आया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल कैबिनेट बैठक के बाद इस फैसले की घोषणा की। राज्य सरकार ने झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 2014 से आयोजित भर्ती परीक्षाओं की व्यापक जांच के आदेश दिए हैं। दिल्ली सरकार स्नातक, स्नातोत्तर और अति विशिष्ट चिकित्सा सीटों के चरणबद्ध विस्तार के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी में चिकित्सा शिक्षा क्षमता बढ़ाने के लिए तैयार है। इस कार्ययोजना के हिस्से के रूप में सरकार ने त्रिआयामी दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें नई परियोजनाएं, पुराने संस्थानों का विकास और स्नातोत्तर तथा उच्च चिकित्सा पाठ्यक्रमों का विस्तार भी शामिल है। इस योजना के अंतर्गत इंदिरा गांधी अस्पताल द्वारका और गुरू गोविंद सिंह अस्पताल से जुड़े प्रत्येक निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेजों में 150 एमबीबीएस सीटें प्रस्तावित हैं। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के अंतर्गत

0: गणना का चरण कल पूरा हो गया। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में लगभग 1,45,00,000 फॉर्म बांटे गए। 13,000 से ज्यादा बूथ लेवल अधिकारी घर घर पहुंचे और मतदाता सूची के सत्यापन का काम पूरा किया। 24 अगस्त से 23 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 27 अक्टूबर को जारी होगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत युवा मामले और खेल मंत्रालय कल गुजरात के गांधीनगर में 2 दिवसीय ब्रिक्स युवा परिषद की बैठक और ब्रिक्स युवा शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ये बैठक ब्रिक्स सदस्य और भागीदार देशों के युवा नेताओं, नवप्रवर्तकों, उद्यमियों, स्वयंसेवकों और परिवर्तनकर्ताओं को एक साथ लाएगी। मंत्रालय ने कहा है कि विषयगत चर्चाओं, संवाद सत्रों और संपर्क बढ़ाने के अवसरों के माध्यम से शिखर सम्मेलन युवाओं को विचारों का आदान प्रदान करने, समाधान प्रस्तुत करने और व्यापक ब्रिक्स प्रक्रिया के भीतर विचार के लिए सिफारिशें विकसित करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। उत्तर प्रदेश में 5 दिवसीय निवेश सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन में 200 से अधिक प्रमुख जापानी उद्योगपति, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, व्यवसायिक प्रतिनिधि और नीति निर्माता भाग लेंगे। इसका उद्देश्य जापानी कंपनियों की व्यवसायिक रुचि को ठोस निवेश, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, संयुक्त परियोजनाओं और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन में परिवर्तित करना है। प्रतिनिधिमंडल विनिर्माण, स्वच्छ और हरित ऊर्जा, सेमीकंडक्टर, डिजिटल अवसंरचना, कौशल विकास और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में अवसरों का पता लगाएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज नई दिल्ली में जापानी प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में चेक प्वाइंट सॉफ्टवेयर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नादव जाफरीर से मुलाकात की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक में भारत में कंपनी की बढ़ती भागीदारी पर चर्चा हुई। इसमें अनुसंधान और विकास विस्तार तथा डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की सुरक्षा के लिए AI आधारित सुरक्षा का उपयोग करना शामिल है। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण विनिर्माण योजना के अंतर्गत 31 और आवेदनों को मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं में करीब 7,877 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। इससे 9,500 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका के साथ कूटनीतिक कोशिशें नाकाम रहती हैं तो वो होर्मोज जलडमरू मध्य में पूरी तरह से आक्रामक सैन्य रुख अपना सकता है। ईरान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि अगर वाशिंगटन अगले कुछ हफ्तों में अंतरिम समझौते को लागू नहीं करता तो ईरान अमरीकी नौसैनिक नाकेबंदी को तोड़ने के लिए सैन्य कार्रवाई कर सकता है। ये चेतावनी ऐसे समय में आई है जब ईरान और अमरीका के बीच स्थायी शांति समझौते की कोशिशें ठप पड़ी हैं। सोमालिया के बेदुआ में सरकारी बलों ने एक हमले को नाकाम करते हुए अल शबाब के लगभग 30 आतंकवादियों को मार गिराया। कई अन्य को गिरफ्तार किया गया है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार आतंकवादियों ने सोमालिया के राष्ट्रीय सशस्त्र बलों के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए वाहनों में रखे विस्फोटकों का इस्तेमाल किया। FIH हॉकी विश्व कप में आज भारतीय महिला हॉकी टीम नीदरलैंड के एम्स्टेलवीन में अपने दूसरे पूल डी मैच में दक्षिण अफ्रीका का सामना करेगी। भारत ने ओलंपिक में रजत पदक विजेता चीन के खिलाफ 2-2 से ड्रॉ खेलकर अपने अभियान की शुरुआत की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। Union Home Minister Amit Shah has informed that the government under the leadership of Prime Minister Narendra Modi destroyed the ISI-backed terror group Shahzad Bhatti Network ahead of Independence Day. He informed that the government also thwarted its plans for subversive attacks by arresting more than 200 operatives. In a social media post, he said that the security forces ripped apart the network by launching coordinated operations across different locations in 14 states, upholding a brilliant example of India's zero tolerance towards terrorism. The security agencies launched a coordinated multi-state operation on 12th of this month, using a real-time intelligence sharing system with the state police forces to counter Shahzad Bhatti network-linked disruptions. The network was involved in several terrorist activities. Shahzad Bhatti Network, a Pakistan-based ISI-backed terror syndicate, linked grenade, IED and petrol bomb attacks and targeted killings across India. In Jharkhand, following a 24-day protest by JPSC and JSSC aspirants, the state government has cancelled the 2024 JSSC CGL examination and all competitive examinations.

एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और समय हो गया है प्रोग्राम भोर सुहानी का। शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की इस भजन के साथ जिसे अपनी आवाज से सजाया है रविंद्र जैन ने।

सुबह की पहली किरण जब धरती को छूती है तो जैसे प्रकृति कहती है, मन पर बीती बातों का बोझ मत रखो, आज को मुस्कुरा कर जियो, मन को गुनगुनाने दीजिए, क्योंकि खुश रहने के लिए हर बार बड़ी वजह नहीं, एक छोटी सी उम्मीद ही काफी होती है।